एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की नवमी तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और

0: इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

निराकार या साकार किसी भी रूप का ध्यान करने पर एक ही परम वस्तु उपलब्ध होती है। उस परमेश्वर की सब प्रकार से शरण होकर कानों से उनका प्रभाव सुनना, श्वासों में उनका नाम उच्चारण करना, इंद्रियों और शरीर से उनकी सेवा करना, मन से स्मरण करना और बुद्धि से उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर उनकी इच्छा अनुसार चलना, यही प्रभु की सेवा है, यही असली भक्ति है और इसी से आत्मा का कल्याण होता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। भगवान कब किस रूप में आकर अपने भक्तों को दर्शन दे दे, ये कहना कठिन है। यदि मनुष्य अपने धर्म में अचल रहता है तो भगवत कृपा अवश्य प्राप्त करता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मानव धर्म हम सबका धर्म है, सभी के लिए अच्छी भावना सदा हमारा कर्म हो, इसीलिए कर्म प्रधान होता है। ज्ञान की निर्मल धारा को अनुभव करना आसान करना, जो प्रभु के नज़दीक आ गया उसे किस बात की कमी।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रासाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम में आज विशेष के साथ साथ दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि, अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, आज की खबर और मौसम की जानकारी साझा की जाएगी। 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। 8:30 पर सुनिएगा हिमाचली गीत और लोकगीत। सुबह 9:00 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00। 10:30 पर पहाड़ों के सुर कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा हिमाचली गीत और लोकगीत। और 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा 11:30 पर। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:00। 12:30 पर कार्यक्रम होगा सुनो सखी। आज का कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा। महिलाएं इस कार्यक्रम में टेलीफोन कर सकती हैं। टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। दिन में 3:05 पर जिला की चिट्ठी कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

फिल्मों से भजन सुनिएगा शाम 5:10 पर। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम में आज सुनिएगा सैर सपाटा। सुरमई सांझ ये कार्यक्रम हम पेश करेंगे 6:05 पर। मौजा गराएं दिया ये कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस होगा रात 8:00। देशगान आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। रात 9:15 पर एक ही गायक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विशाल ददलानी के गाए चुनिंदा फिल्मी गीत। धाम गीता दी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। 10:30 पर सुनेगा पुरानी फिल्मों से गीत। कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20 पर, दिन में 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और 7:00

45 मिनट पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां साहाय्योद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमानस्य 57 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है।

0: सुबह सुहानी।
1: नई ऊर्जा नई उमंग के साथ हाजिर है हम कार्यक्रम सुबह सुहानी लेकर। अच्छा लगता है हमें उन सभी को सुबह का अभिवादन करना जो हमारे समक्ष न होते हुए भी हमारे हृदय के बहुत पास होने का एहसास दिलाते हैं। सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। सुबह सुहानी कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सुविचार के साथ। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो नेक काम करते रहिए और सुनिए ये गीत।

महेंद्र कपूर का गाया आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। सुबह सुहानी ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं आज 30 जून है और इतिहास में आज का दिन खास और विशेष जगह रखता है, तो नजर डालते हैं आज विशेष पर। 1938 में 30 जून के दिन बच्चों का सबसे पसंदीदा कार्टून चरित्रों में शुमार सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर नजर आया था। उसके बाद सुपरमैन दुनिया भर के बच्चों का पसंदीदा किरदार बन गया था। साल 2000 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान की थी और आजकल लगभग हर ऑफिस में डिजिटल हस्ताक्षर कर हाजिरी लगती है। प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का जन्म 1928 में आज ही के दिन हुआ था। और अब हम बात करेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, शिक्षाविद और कुशल राजनीतिज्ञ जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने दुनिया के सामने यह साबित किया कि ब्रिटिश राज किस तरह भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है। उनकी प्रसिद्ध किताब में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1892 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां की संसद का सदस्य चुना गया था। उन्होंने वहां रहकर सरकार के सामने भारत के लोगों की समस्याओं और उनके अधिकारों की आवाज़ उठाई। दादा भाई नौरोजी किसी भी कॉलेज में गणित और प्राकृतिक दर्शन के प्रोफेसर बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए कई कार्य किए। उनका कहना था, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, पारसी या ईसाई हों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सब पहले भारतीय हैं। 1914 में आज ही के दिन इस महान विभूति का निधन हुआ था। उनका पूरा जीवन भारत की आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्पित था। इन्हें हमारा शत शत नमन।

सुबह सुहानी ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल 30 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन हमें ब्रह्मांड में घूम रहे एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रहों के से जुड़े खतरों और उनके वैज्ञानिक महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए समर्पित है। 30 जून की तारीख चुनने के पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का घटना हुई थी। इस दिन एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया था और हवा में ही बड़ा धमाका हुआ था। इसके कारण करीब 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 8 करोड़ पेड़ पूरी तरह से धराशायी हो गए थे। 2014 में मशहूर वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने मिलकर इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक मंजूरी दे दी। तब से इसे हर साल मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और अगर कोई क्षुद्र ग्रह भविष्य में हमारी पृथ्वी की तरफ आता है तो उससे निपटने के लिए इसरो, नासा, ईएसए। ये सभी क्या तैयारियां कर रहे हैं इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना, साथ ही वैज्ञानिकों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे ज्यादा से ज्यादा एस्टेरॉयड को खोजे और उनके रास्तों पर नजर रखें। आपको बता दें कि डायनासोरों के विलुप्त होने के पीछे भी एक विशालकाय एस्टेरॉयड का ही हाथ था। आज के समय में तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि स्पेस एजेंसियां लगातार इन पर नजर रखती हैं। हाल ही में नासा के डार्ट मिशन ने एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एक क्षुद्र ग्रह से टकराया था ताकि उसका रास्ता बदला जा सके, जो कि भविष्य में पृथ्वी को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता है। और इतनी अच्छी जानकारी के बाद अब रुख करते हैं मनोरंजन की ओर।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस भी श्रोताओं हर साल 30 जून को मनाया जाता है। साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। यह दिन लोकतांत्रिक प्रणालियों में संसदों की महत्वपूर्ण भूमिका, उनके कामकाज की समीक्षा करने और शासन व्यवस्था में जनता, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देता है। 30 जून 1889 में संसदों के वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में यह तारीख चुनी गई थी। यह दिवस संसदीय लोकतंत्र की चिरस्थायी प्रणाली

सुबह सुहानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने उनकी जीवन और विरासत पर एक खास प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खोली है। 3 मूर्ति भवन में स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में लगी ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में नई ईवी नीति 1 जुलाई यानी कल से लागू हो जाएगी, जो 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसमें 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी भी

बढ़ाई जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो रही है। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं के लिए परामर्श जारी कर सावधानी बरतने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि श्रद्धालु तब तक यात्रा शुरू न करें जब तक आवश्यक सभी दस्तावेज प्राप्त न हो जाएं। केवल इस उम्मीद से यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर दस्तावेज मिल जाएंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता महानिदेशालय DGT की ओर से 30 जून तक सभी ITI को सीटों और ट्रेडवार अनुदेशकों का विवरण अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में प्रवेश का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया जुलाई से शुरू होने की संभावना है। अब देश विदेश में बैठे घर बैठे मिलेगा बाबा बालकनाथ मंदिर का प्रसाद। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध के देश विदेश में बसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। मंदिर ट्रस्ट पहली बार इंडिया पोस्ट के सहयोग से ऑनलाइन प्रसाद वितरण सेवा शुरू करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के शुरू होने के बाद ऐसे श्रद्धालु जो किसी कारणवश द्योट सिद्ध नहीं पहुंच पाते, वे भी बाबा का प्रसाद सीधे अपने घर पर प्राप्त कर सकेंगे। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 जून तक कहीं कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 1 जुलाई से मैदानी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ये थी आज की खास खबरें।

0: इसी के साथ सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं आज की सभी जानकारियां आपको रुचिकर लगी होंगी और कल के सुबह सुहानी कार्यक्रम में होंगी और भी जानकारियां। तो सुनते रहिए 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर FM धर्मशाला।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: एफएम धर्मशाला पर अगला कार्यक्रम है शुभ प्रयाग, जिसमें आप सुना करते हैं हिमाचली गीत और लोकगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये शिव भजन, जिसे गाया है नरोत्तम कुमार और साथियों ने।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएगी।
1: मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
4: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम

0: में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब

0: में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी

0: मॉर्निंग न्यूज, हैव अ नाइस डे।
1: आकाशवाणी से
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हिमाचली गीत और लोकगीत।

शांति विष्ट की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये विवाह लोकगीत। अब सुनिए लीला भंडारी को।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम का अगला लोकगीत सुनिए, जिसे गाया है निम्मो चौधरी ने।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए अब पेश है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।
1: हेलो धर्मशाला, हेलो धर्मशाला,
0: हेलो धर्मशाला प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, नई और पुरानी फिल्मों का गुलदस्ता लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त संगीता। और जिन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे, उन फिल्मों के नाम आप नोट कर लीजिए। फिल्में हैं एक दूजे के लिए, एक मुसाफिर, एक हसीना, फ़र्ज, हीरा पन्ना, हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं, जब वी मेट, क्रोधी, मुझे कुछ कहना है, नील कमल, सपने, साजन के, सिर्फ तुम। ये 12 फिल्में हैं और इनमें से, इन फिल्मों से कोई भी गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। और उसके लिए आपको डायल करना होगा टेलीफोन नंबर 01892224391। और इस कार्यक्रम को आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो जल्दी से कॉल मिला लीजिए और सुनिए इन फिल्मों से कोई भी गीत। कार्यक्रम के पहले कॉलर फोन लाइन पर आ चुके हैं। हेलो जी, इनसे बात नहीं हो पाई है हमारी। और हम चाहेंगे कि जो भी श्रोता हमें कॉल करें वो ज़रूर हमसे बात करें और सिग्नल का ख़ास ख्याल रखें। हेलो जी, फ़ोन लाइन फिर से कट चुकी है।

हेलो, जी फोन लाइन ढंग से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि टेलीफोन नंबर है 01892224391। इस फोन को मिलाकर आप हेलो धर्मशाला प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं।

0: पहले कॉलर आ चुके हैं फोन लाइन पर, बात करते हैं। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आप कार्यक्रम के, पहले कॉलर हैं।
1: और हाँ जी, मैं सुन रहा था कार्यक्रम और कॉल ड्रॉप हो रही थी श्रोता की।
0: जी जी जी, और बहुत सारे श्रोता कॉल करते रहते हैं, तो जिसकी भी कॉल मिल जाए वही लकी होता है। जी देखिए, इनकी कॉल भी कट चुकी है, तो बहुत सारे श्रोता इस समय हमें फ़ोन मिलाते रहते हैं तो कॉल कट जाती है। चलिए सुनिए।

0: हेलो
1: नमस्कार जी, मैं राकेश कुमार लोहा बाजार मनेर कोना तो बोल रहा हूँ जी।
0: जी, बहुत
1: चलो
0: बहुत
1: एक
0: स्वागत
1: पंजाबी
0: है।
1: बैंड का
0: सबसे
1: कोई फिल्म
0: पहले
1: सुना दो,
0: आप फिल्म का नाम बता दीजिए, कॉल कट जा रही है।
1: पंजाबी बैंड का सुना दीजिए जी, नगाड़ा
0: जी
1: नगाड़ा।
0: अच्छा जी, बिल्कुल जी, आपकी पसंद का ये गीत बजेगा थोड़ी ही देर बाद। आपने कॉल किया, बहुत
1: चलो
0: बहुत धन्यवाद।
1: और ठीक ठाक हो जी।
0: हाँ जी, बढ़िया बढ़िया।

0: हेलो, धर्मशाला प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार जी, नीलकंठ का स्नातक में जगदीश चंद्र बोल रहे हैं। हिम्मत
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: कन्नौर से जगदीश चंद
0: जी। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: नीलकंठ का स्नातक, बाबल की दुआएं लेती जा।
0: जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और इस आपका आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी के श्रोता भी आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। 01892224391 यह है टेलीफोन नंबर। और अब सुनते हैं नील कमल फिल्म का ये गीत है।

0: हेलो धर्मशाला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 01892224391 यह टेलीफोन नंबर आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी, और सिर्फ तुम फिल्म का गीत सुना दीजिएगा, कट जाए मेरा कॉल। तो
0: कौन सी मूवी का?
1: सिर्फ तुम।
0: सिर्फ तुम जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: पहली पहली बार मोहब्बत की है। मैं ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया और फोन लाइन इनकी कट चुकी है। बहुत सारे कॉलर जो है आज के दिन हमें फ़ोन करते हैं, फ़ोन मिलाते हैं, इस कारण भी फ़ोन लाइन जो है बहुत बिजी होती है और कट भी जाती है। तो घबराना नहीं है, फ़ोन लाइन फ़ोन मिलाते रहना है और फ़ोन कभी ना कभी मिल ही जाएगा। सुनिए इनकी पसंद पर सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत है।

हेलो धर्मशाला प्रोग्राम के बाकी के गीतों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे 9:30 पर, और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें हिम परिवार।

0: से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का लिया फैसला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, खदराला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी हुई मजबूत। पिछले 3 वर्षों में 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का हुआ उत्पादन। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने एक संयुक्त बयान में कांग्रेस सरकार पर निराधार बयानबाजी करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 1 से 5 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि खदराला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। शिमला जिले के खदराला में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में कल उन्होंने कहा कि पर्यटन व क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से इस मार्ग का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1962 से पूर्व ये मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसे बाद में राज्य राजमार्ग का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि सुंगरी मार्ग के सुधारीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि युवा देश व प्रदेश का भविष्य है और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं का स्वस्थ व जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से नशे, विशेषकर चिट्टा जैसी घातक प्रवृत्तियों से दूर रहने का भी आह्वान किया। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत हुई है और किसानों की मेहनत से परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए, जिससे 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: मंडी जिले में रेशम उद्योग अब ग्रामीण समिति की नई पहचान बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार के प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत से हजारों परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 27 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ है। वही 84,000 से अधिक उन्नत शहतूत पौधे भी वितरित किए गए हैं। सिलेक समग्र 2 योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 150 रेशम उत्पादकों को 1,63,00,000 रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि रेशम उद्योग मंडी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीष सूद।
2: प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों में आउटसोर्स आधार पर भर्तियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग केवल अस्थायी और आवश्यकता आधारित व्यवस्था होगी और इसे नियमित सरकारी रोजगार का विकल्प नहीं माना जाएगा। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को ये संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत जिन पदों पर नियमित भर्ती हो चुकी है या स्वीकृत पद भरे हुए हैं, वहां अब आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। विभागों को स्थायी रिक्त पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया में तेजी

0: लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर भाजपा के खिलाफ निराधार बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। कल शिमला में एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने जिलाधीशों और SDM से राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग की है। नेताओं ने अधिकारियों से संविधान और कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्य करने की अपील की। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनादेश को प्रभावित कर रही है, जिनका जनता समय आने पर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया गया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। कुल्लू जिले के मनाली में एक 14 वर्षीय बालिका की मनालसू नाले में बहने से मृत्यु होने का समाचार है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया गया। बालिका का शव व्यास नदी से बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त बालिका उत्तर प्रदेश के बिजनौर की निवासी थी, जो माता पिता के साथ मनाली भ्रमण पर आई थी। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में CCTV कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। प्रथम पूजा के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक डॉक्टर अकुन सभरवाल ने पवित्र गुफा और बरारी मार्ग में चिकित्सा सहायता केंद्रों का उद्घाटन किया। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने को लेकर परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने जल्द प्रदेश में मानसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसको देखते हुए विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने और विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से भी बचने का आग्रह किया है। विभाग ने लोगों से प्रशासन द्वारा मौसम से जुड़ी चेतावनी और एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं पूनम भारद्वाज।
0: अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। राधा पालमपुर, सुमन मंडी की मेयर शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, मंडी में भाजपा और पालमपुर में कांग्रेस का कब्जा। अमर उजाला और दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द हैं, पालमपुर में कांग्रेस की राधा, मंडी में भाजपा की सुमन बनी मेयर। पंजाब केसरी के शब्द हैं, GPDP तैयार होने पर ही पंचायतों को मिलेगी 481 करोड़ की ग्रांट।

0: मजबूत। पिछले तीन वर्षों में 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का हुआ उत्पादन। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने एक संयुक्त बयान में कांग्रेस सरकार पर निराधार बयानबाजी करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में प्री मॉनसून सक्रिय, मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 1 से 5 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हेलो धर्मशाला कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर है 01892224391। और जो फिल्में अब बची हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। एक मुसाफिर एक हसीना, फर्ज, हीरा पन्ना, हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं, क्रोधी, मुझे कुछ कहना है और सपने साजन के। इन फिल्मों से कोई भी गीत अब आप इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं। और श्रोता जो है 01892224391 इस टेलीफोन नंबर को डायल करके आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। हेलो,
2: नमस्कार बेटा, मैं चिंगमरी कुराचा कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी
2: जी बताइए मुझे मैडम, क्या क्या फिल्म निकाले हैं जल्दी से बताइए।
1: जी फिल्मों के नाम मैंने अभी अभी बताए हैं
2: क्योंकि नेटवर्क गड़बड़ होता है मैडम, क्या है ना मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से।
1: जी बिल्कुल जी, फोन लाइन भी ऐसे ही कट जा रही है, इसलिए अगर आपने नोट किया होता तो अच्छा रहता। चलिए बता देते हैं एक बार फिर से, सपने सपने साजन के, हम साथ साथ हैं, एक मुसाफिर एक हसीना, फर्ज, हीरा पन्ना, हम दिल दे चुके सनम और हम साथ साथ हैं। इन फिल्मों से कोई भी गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार। जी
3: नमस्कार मैडम जी।
1: जी
3: रजिंदर मन्हास बोल रहा हूँ शाहपुर कांगड़ा से ना जी।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका,
3: धन्यवाद मैडम
1: जी। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे पहले ये बता दीजिए। जी
3: सपने साजन के का कोई भी।
1: जी बिल्कुल जी। और क्या हाल चाल है आपके?
3: ठीक है मैडम जी, बढ़िया है। और मौसम भी बड़ा अच्छा है
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? कोई भी गीत सुना दे आपको।
3: कोई भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ही प्यारा सा गीत हम आपको सुना रहे हैं इसी फिल्म का। और सुनिए, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: जी।

0: जी हाँ, हमारी भी यही दुआ है कि अगले कॉलर से हमारी बात हो पाए। जी देखिए, और बात नहीं हो पाई, हमारी दुआएं जो है वो फेल हो गई। इस समय आप सुन रहे हैं हेलो धर्मशाला प्रोग्राम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 01892224391 यह टेलीफोन नंबर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हेलो जी हाँ, श्रोता सिग्नल का ध्यान रखे और तभी इस प्रोग्राम में कॉल मिलाए ताकि हमारी और आपकी बात अच्छे से हो पाए। हेलो हेलो
1: नीलम, छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो

0: पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो धर्मशाला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो धर्मशाला प्रोग्राम में अब जिन फिल्मों के गीत श्रोता सुन सकते हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। एक मुसाफिर, एक हसीना, फर्ज, हीरा पन्ना, हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं, क्रोधी और मुझे कुछ कहना है। इन फिल्मों से कोई भी गीत अब श्रोता सुन सकते हैं। हेलो जी, और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर है 01892224391। 01892224391 ये है टेलीफोन नंबर हेलो धर्मशाला प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर फोन लाइन पर है। हेलो जी, इनसे भी हमारी बात नहीं हो पाई है। चलिए फोन देखते हैं कब मिलता है, तब तक हम सुनते हैं एक और गीत है।

0: हेलो धर्मशाला, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 01892224391 ये है टेलीफोन नंबर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हेलो,
1: नमस्ते
0: जी, कौन बोल रही हैं?
1: मैं समायरा बोल रही हूँ
0: जी। समायरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे
1: हम? दिल दे चुके सनम
0: जी। कौन सा गीत?
1: हम दिल दे चुके सनम का कोई भी गाना।
0: अच्छा, कोई भी गाना है कि टाइटल सॉन्ग?
1: हाँ जी
0: जी जी, इनकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत है।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। प्रोग्राम के आखिरी कॉलर हैं आप। हाँ जी, नाम बताइए। और
1: हीरा पन्ना फिल्म का गीत अजय गुप्ता सिद्धवाड़ी से।
0: जी, आप प्रोग्राम के आखिरी कॉलर हैं जी। हीरा पन्ना फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं तस्वीर उतारता हूँ।
0: जी बिल्कुल जी, किसकी तस्वीर उतारते हैं जी? इनकी पसंद पर हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, मैं तस्वीर उतारता हूँ, किशोर कुमार की आवाज़ में।
2: जरा और खेल।

हेलो धर्मशाला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि जिनकी कॉल आज के इस कार्यक्रम में लग गई है वे एक महीने तक इस कार्यक्रम में टेलीफोन ना करें, और जिनकी कॉल आज नहीं लगी है वो अपना प्रयास जारी रखें। और आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया सुनील कुमार ने, कार्यक्रम प्रस्तुति डॉक्टर जतिंद्र पाल सिंह, और अब संगीता आपको कहती है नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। हेलो धर्मशाला,

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतों का कारवां।

श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं और मैं आपके अपनी रेडियो दोस्त सचिता लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम गीतों का कारवां। अब से लेकर ठीक 10:30 तक इस सफर में आप बनेंगे हमारे हम सफर।

दोस्तों, अगर आप इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहरना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आज सज चुकी है सुरों की महफिल और शुरू हो चुका है यादों का, जज्बातों का और हिमाचल की हसीन वादियों का एक बेहद ख़ास सफ़र, जिसका नाम है गीतों का कारवां। आज हम और आप मिलकर सैर करेंगे शिमला की बर्फीली सड़कों की और खो जाएंगे मनाली के रास्तों में और महसूस करेंगे चंबा की उन ठंडी ठंडी हवाओं को उन गानों के जरिए जिन्होंने बड़े पर्दे पर पहाड़ों की खूबसूरती को अमर कर दिया। अभी जो आपने कार्यक्रम का पहला गीत सुना वो गीत हमने लिया था ये जवानी है दीवानी फिल्म से, और आपको बता दें कि इस गाने की शूटिंग मनाली के हडिंबा देवी मंदिर में हुई थी और सोलांग वैली में हुई थी, लेकिन फिल्म में इसे कश्मीर कहकर दिखाया गया था पर शूटिंग मनाली में हुई थी। ऐसा ही हाईवे फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और इस गीत की भी एक छोटी सी कहानी है जो हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

0: श्रोताओ, हिमाचल का एक रूप ऐसा भी है जो बिल्कुल अछूता है, शांत है और बेहद गहरा है। इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे में किन्नौर की उन ऊंची ऊंची पथरीली वादियों को जिस खूबसूरती से दिखाया गया वो रूह को छू जाता है और ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हमसे कुछ कहना चाहते हों। आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे गाने सुनवा रहे हैं जिनकी शूटिंग हिमाचल में हुई। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से

0: एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। श्रोताओं, फिल्मों में अपने हिमाचल को देखना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ की हवा को महसूस करना बिल्कुल अलग बात है। हम में से कितने लोग इस वक्त पहाड़ों की वादियों में बैठकर रेडियो सुन रहे होंगे और आज उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होगी। कुछ धुनें ऐसी होती हैं श्रोताओं, जिन्हें सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि पहाड़ों की खुली वादियों में हों। और श्रोताओं, जब भी पहाड़ों और वादियों के गानों की बात होती है और इस गाने के बिना हर महफिल अधूरी सी है। एआर रहमान का संगीत और हरीश चंद्रन की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे ये गाना बना ही हिमाचल की ठंडी हवाओं के लिए है। तो श्रोताओं, महसूस कीजिए इस गाने के जरिए हिमाचल की उन वादियों को और उन ठंडी ठंडी हवाओं को। और आपको बता दें कि इस सदाबहार गाने के लिए बहुत से हिस्सों में इस गाने की शूटिंग की गई हिमाचल की वादियों में।

क्रेश फिल्म का गीत श्रोताओं अभी आपने सुना। और आपको बता दें कि मनाली के सोलांग वैली में इस गाने की शूटिंग हुई थी और वहां के खूबसूरत पुल, नदी और पहाड़ों को इस गाने में दिखाया गया था। हिमाचल की खूबसूरती को दिखाता एक और ही प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं। गदर फिल्म का ये गीत है। फिल्म में जो पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था श्रोताओं, असल में उसकी शूटिंग हिमाचल के पालमपुर और शिमला के पास हुई थी।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं जब भी मेट फिल्म से, और श्रोताओं इस गाने की शूटिंग मनाली और रोहतांग की बर्फीली सड़कों पर हुई थी। हिमाचल सिर्फ सुकून ही नहीं देता श्रोताओं, ये जिंदगी जीने का एक नया नजरिया भी हमें देता है।

श्रोतो, पहाड़ों की एक खासियत होती है, आप वहाँ से जितनी भी बार गुजरते हैं हर बार वो हमें कुछ न कुछ नया दे जाते हैं। आज हमारे गीतों का कारवां का ये सफ़र भी हिमाचल की उन्हीं वादियों, देवदार के पेड़ों और बर्फीली हवाओं के बीच से होकर गुजरा, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

हिमाचली गीत और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आपने भुवनेश कुमार का गाया ये लोकगीत सुना। लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको नरोत्तम और साथियों का गाया ये लोकगीत सुनवा रहे हैं।

कश्मीरी राम के गाए इसी लोकगीत के साथ आज का पहाड़ों के सुर ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारतवर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल

0: की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ओम बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने आगे कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाबदेह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की संसद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है और इसने हमेशा संविधान की भावना, लोकतांत्रिक परंपराओं और जनप्रतिनिधित्व की गौरवशाली विरासत को सशक्त रूप से कायम रखा है। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत हुई है और किसानों की मेहनत से परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध करवाए गए, जिससे 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कुकून का उत्पादन हुआ। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: मंडी जिले में रेशम उद्योग अब ग्रामीण समिति की नई पहचान बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार के प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत से हजारों परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 27 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ है। वही 84,000 से अधिक उन्नत शहतूत पौधे भी वितरित किए गए हैं। सिलिक समग्र 2 योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 150 रेशम उत्पादकों को 1,63,00,000 रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि रेशम उद्योग मंडी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने जल्द प्रदेश में मानसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसको देखते हुए विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने और विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। सतलुज नदी में लगातार बढ़ रहे जल प्रवाह को देखते हुए कड़छम बांध प्रबंधन द्वारा आज अतिरिक्त 100 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद रेडियल गेटों से कुल जल निकासी 195 क्यूमैक्स हो जाएगी। प्रबंधन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की।

कार्यक्रम में सबसे पहले आपने ये डोगरी लोकगीत सुना जिसे गाया था श्याम मनियाल ने। अगला लोकगीत आपको सुनवा रही हैं विनय अवरोल का गाया हुआ।

0: गूंज पहाड़ों की ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
4: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
5: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: गूंज पहाड़ों की कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं पूनम शर्मा और सपना शर्मा का गाया ये लोकगीत।

नियमत हुसैन का गाया ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। गूंज पहाड़ों की इस कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत अब आपको सुनवा रहे हैं राज प्रभाकर की आवाज में।

इसी लोकगीत के साथ आज का गूंज पहाड़ों की कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
1: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
1: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
1: जी,
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
1: जी।
0: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश

0: इंसुलेशन का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है, हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओं, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे पर खोदेंगे,
4: हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, न होंगे बेहाल।
3: खोदेंगे पर खोदेंगे,
4: हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, न होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
5: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी का।

0: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
1: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
4: क्या
6: क्या
4: क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
4: कू कू।
3: नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
1: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू,
6: हईशा।
4: दम लगा के कू,
6: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
6: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: का का का।
7: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पपीहा ना पिए दूजा पानी, हाँ हाँ पपीहा ना पिए दूजा पानी, पपीहा ना पिए दूजा पानी।
1: काम काम काम, अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: बहु बहु बहु, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो, इसको यही दंड दो।
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: काँ, काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
6: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
6: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
5: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
1: काँ, काँ, काँ।
5: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोचकर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
5: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
6: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: गया?
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं आनंद बख्शी की लिखी रचना के साथ। कर्मा फिल्म का ये गीत है, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे।

0: कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद अजीज और साथियों का गाया हुआ ये था गर्मा फिल्म का गीत।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अलका याग्निक और साथियों का गाया हुआ गीत अब पेश कर रहे हैं। अनु मलिक ने इस गीत की धुन बनाई है और फिल्म है इश्क विश्क।

0: समीर का लिखा हुआ गीत अभी सैनिक भाई सुन रहे थे। आनंद मिलंद का संगीत था, जिगर फिल्म का ये गीत था, इसे आवाज दी थी उदित नारायण और साधना सरगम ने। अगला गीत इस ब्रेक के बाद।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कच्चे धागे फिल्म का गीत अब पेश कर रहे हैं, अलका याग्निक और कुमार सानू ने इसे गाया है। संगीत है नुसरत फतेह अली खान का।

वादा फिल्म के इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

प्रसन्न रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि प्रसन्नता को शोर पसंद नहीं। जैसे कि जिंदगी के हर पल को खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ बिताइए। और ये खूबसूरत सी पंक्तियाँ थी आप सब खूबसूरत सी सखियों के लिए, और इन्हीं के साथ स्वागत है आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। और आज मैं हूँ आपके साथ, आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ सखियों, मंगलवार का ये खूबसूरत मौसम और साथ में खूबसूरत अंक, जिसका इंतज़ार आप सभी को था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो जल्दी से डायल करें स्टूडियो का नंबर 0189222431। जी हाँ, 01892224391। और आज की हमारी जो चुनिंदा फिल्में हैं जिनके गीत आप सुन सकती हैं, उनके नाम नोट कर लें। फिल्में हैं 1942 अ लव स्टोरी, आदमी खिलौना है, आनंद, बॉबी, चोरी चोरी चुपके चुपके, हम तुम्हारे हैं सनम, जब तक है जान, कुरुक्षेत्र, लावारिस और मिस्टर इंडिया। तो सखी ये हैं हमारी आज की फिल्में, और जब भी कार्यक्रम में आप फ़ोन करें तो सिग्नल का ध्यान रखें ताकि आपसे हमारी बात अच्छे से हो पाए, और साथ ही

0: बरसात
1: जी
0: शुरू हो गई है वैसे अब।
1: तभी तो मैंने कहा खूबसूरत मौसम है ना।
0: हाँ जी मैम,
1: तो कैसा लगता है आपको बरसात का मौसम?
0: बरसात अच्छी है मैम, बारिश तो बड़ी अच्छी है, पर बारिश के बाद जब मौसम हो जाता है कि बस गर्मी वाला पसीने वाला, वो नहीं अच्छा
1: जी जी
0: लगता।
1: उमस भरी गर्मी हो जाती है ना,
0: हाँ
1: बहुत
0: जी
1: पसीना पड़ता है, चिपचिपी
0: अंदर तो
1: सी।
0: बड़ा बुरा हाल है, बाहर बड़ी अच्छी हवा आती है, जैसे बाहर का मौसम बड़ा सुहावना बड़ा प्यारा होता है।
1: जी, तो बाहर बैठकर बाहर के मौसम का मजा लीजिए
0: हाँ
1: लीजिए ज्यादातर।
0: जी, और वैसे भी मैम पिछली बार मैं फोन कर दी थी, बस पता नहीं आपके साथ ही बात होती है, बस ये समझ लो कि आप जब भी आपने आना है आपके लिए कॉल लगनी। पिछली बार मैंने ट्राई किया किया उठाया ही नहीं, और जब भी आपसे बात करती हूँ तो देख लो मैंने पहली बार किया और आपने उठा
1: जी बिल्कुल, हम
0: लिया।
1: क्यों ना उठाएं इंदु, और अच्छा लगता है ना। और चलिए,
0: हाँ
1: एक कनेक्शन है हमारा और आपका, लगता है तभी बात हो पाती है।
0: ये समझ रही मैम, आपके साथ कुछ ज्यादा ही हो गया, जुड़ गया ये
1: जी, और
0: कनेक्शन।
1: ये कनेक्शन यूं ही बना रहे यही हम चाहते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी मैम
1: जी
0: बिल्कुल।
1: बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
0: मैम 92 लव
1: जी
0: स्टोरी
1: जी रिम
0: रिम
1: झिम रिम झिम, है ना बहुत ही खूबसूरत
0: सिंह
1: गीत है ये।
0: की। आप
1: और
0: पहचान जाती हैं कि मैम मैंने कौन सा गाना सुनना है ना।
1: जी, नहीं इसलिए ये फिल्म रखी थी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इसका गीत ये था, है ना।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: चलिए इंदु, साथ में सुनते हैं, और शुक्रिया फोन करने के लिए।
0: ओके मैम, धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। हेलो
1: हेलो,
0: जी, नाम बताइए अपना।
1: मैं शिवानी बोल रही हूँ,
0: शिवानी कहाँ से बात
1: कांगड़ा
0: कर?
1: से।
0: कांगड़ा से।

0: जी डाटा से बात मैम।
1: जी, तो क्या करती हैं शिवानी?
0: मैम शेफ हूँ बेकरी में।
1: शेफ हो? और डाडासिबा में मौसम कैसा है?
0: मैम मॉर्निंग में तो बारिश थी, अभी धूप लगी है।
1: और ऐसे मौसम में बेकरी का काम किस तरह रहता है?
0: मैम आजकल से सर्दी, मतलब बारिश में होता है कि फास्ट फूड का सही रहता है। फास्ट फूड का भी है हमारा, पिज्जा सब है, केक हो गए। मैम
1: जी, और शिवानी साथ में काम के साथ साथ क्या करना अच्छा लगता है, क्या शौक रखती हैं?
0: म्यूजिक का,
1: सुनने का?
0: हाँ जी
1: जी, तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं?
0: मैम, चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी का।
1: चोरी चोरी चुपके चुपके, इस फिल्म का कौन सा टाइटल ट्रैक या कोई और?
0: मैम कोई भी, हाँ
1: कोई सा भी?
0: जी
1: ठीक है, आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और शिवानी, आपने कार्यक्रम में फ़ोन किया, बहुत शुक्रिया उसके लिए।

0: सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपनी रेडियो सखी रीना के साथ। देखते हैं हमारी अगली कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी सविता बोल रही हूँ मैम, रानीताल से।
0: जी सविता जी, कैसी हैं आप?
1: जी अच्छी हूँ, और आप कैसे हो मैम?
0: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। देखिए आपके साथ बातें कर रहे हैं, आपका मनोरंजन करवा रहे हैं खूबसूरत से गीतों के साथ।
1: हाँ जी, हाँ जी, अच्छे होने चाहिए भगवान से, ये प्रार्थना करती हूँ मैम।
0: जी शुक्रिया उसके लिए। और बताइए सविता जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं आज?
1: जी कहना तो ये चाहती हूँ, आज मौसम बहुत ही अच्छा है मैम।
0: मौसम बहुत अच्छा है, तो क्या कुछ किया जा रहा है? मौसम का मजा किस तरह से लिया जा रहा है?
1: जी बस ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं।
0: रिमझिम बारिश
1: बारिश
0: देख
1: हुई
0: रहे
1: अभी
0: हैं।
1: हाँ जी, अभी हुई थी थोड़ी देर पहले बारिश अभी ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। नहीं
0: गर्मी से
1: तो
0: राहत।
1: बहुत ही ज्यादा गर्मी थी मैम, बहुत ही ज्यादा।
0: जी,
1: हाँ जी
0: और झमाझम बारिश हो रही हो, और कुछ पकवान भी बनाए जा रहे हैं?
1: जी अभी तक तो नहीं है, पर शायद देखते हैं दोपहर के बाद है, चाय के साथ शायद पकोड़े वगैरह बना लें।
0: जी, मन किया तो जरूर है ना।
1: हाँ जी,
0: और
1: हाँ
0: छोटी छोटी ये जो खुशियां हैं भाई, जरूर हमें इनका लुत्फ उठाना चाहिए, क्या कहती हैं?
1: हाँ जी मैम, बिल्कुल वो तो है। ये है कि बारिश वगैरह हो तो मन करता है कि कुछ बना कर खाया
0: कुछ
1: जाए या कुछ
0: बनाए, कुछ मीठा बनाए या नमकीन बनाए, है ना, कुछ ना कुछ। और जो सविता जी मन करे ना, वो कर लेना चाहिए।
1: हाँ जी मैम, सोच तो यही रही हूँ कि पकोड़े बनाए चाय के साथ।
0: चलिए जरूर, आप जरूर इस मौसम का मजा लें। और बताइए कार्यक्रम में किस गीत के साथ मजा ले रहे हैं?
1: जी आदमी खिलौना है फिल्म का गाना है ना मैम,
0: कौन सा
1: अभी भूल गई मैं, अभी याद था
0: जल्दी बताइए, यही वाला ट्रैक
1: वो।
0: सॉन्ग?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी
0: ठीक
1: मैम,
0: है
1: बहुत से
0: आपकी।
1: जताते हो चाह हमसे।
0: अच्छा जी, तो ठीक है, आपकी फरमाइश आपके रेडियो सेट पर है। सविता जी साथ में सुनते हैं, और शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: थैंक यू मैम जी, थैंक यू।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम जी। तो
0: नमस्ते जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं
1: से तानिया बोल रही हूँ मैडम जी। कठुआ
0: जी? कहाँ से
1: से बोल रही हूँ तानिया मैडम जी। ठीक
0: जी? सानिया जी, कैसी हैं आप?
1: है मैडम जी, आप बताइए, आप ठीक हो?
0: हाँ जी, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और कठुआ के क्या हाल चाल हैं?
1: ठीक है मैडम जी, बस
0: क्या कुछ कर रही हैं आज?
1: घर का काम किया और आपको फोन लगा दिया मैं मैडम को।
0: मैडम को फोन किया जाए है ना?
1: हाँ जी
0: तो क्या
1: मैडम
0: बात करनी है आज आपको कार्यक्रम में?
1: जी, मैडम जी आज मौसम बहुत अच्छा है, कल बहुत गर्मी थी, आज अच्छा।
0: देखिए, मौसम भी किस तरह रूप बदलते हैं ना। कल गर्मी का एहसास था और आज आपको बारिश की वजह से ठंडक दे दी।
1: आज तो मैडम जी तो अच्छे चल रहे हैं, कल तो पक्के नहीं चल रहे थे, ये गर्म हवा आ रही थी।
0: बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बरसात की गर्मी तो होती भी बहुत ही चिपचिपी सी है
1: हाँ मैडम जी,
0: जी। तो बताइए सानिया जी, कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं आज?
1: मैडम जी बॉबी फिल्म का है? हाँ
0: कौन सी? बॉबी?
1: जी मैडम
0: हाँ
1: जी,
0: जी,
1: तो
0: हाँ जी, बिल्कुल है।
1: टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
0: बॉबी फिल्म का कोई टाइटल ट्रैक? इसमें बहुत अच्छे गीत हैं, आप उनमें से कोई बता दीजिए।
1: मैडम जी ये सुना दो, हम मैं के चल जाऊंगी, तुम देख रही हो।
0: ठीक है, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं आपके इस गीत के साथ, और शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: मैडम।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: मैं संजना भंडारी बोल रही हूँ, नगरोटा बगमा से।
0: जी संजना जी, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ।
0: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। और क्या कुछ कर रही?
1: मौसम तो बड़ा गर्म है,
0: अच्छा, आपके नगरोटा में भी बारिश नहीं हुई?
1: बारिश तो हो रही है, कल कल से शुरू हुई है, परसों से। और जितनी बारिश हो रही है उतनी गर्मी हो
0: उतना
1: रही है,
0: उबाल निकल रहा है।
1: बाहर निकल रहा है। धर्मशाला में तो थोड़ा ठंडा मौसम भी रहता है। हाँ
0: जी, तो आ
1: जी
0: जाइए आप धर्मशाला।
1: कोई बात नहीं, हम तो आते रहते हैं।

0: विष्णुमा मौसम का मजा लेने, है ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी।
1: हाँ
0: संजना जी और बताइए क्या कुछ कहना चाहती हैं।
1: बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बाहर से आ रहे हैं टूरिस्ट वो अपना ध्यान रखें और गंदगी ना फैलाएं,
0: जी
1: बस यही होता है कि साफ सुथरा रहे
0: साफ सफाई
1: वातावरण।
0: रखें, है ना
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी
1: जी तो
0: जी बहुत
1: यही
0: अच्छी
1: कहना
0: बात,
1: चाहती हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने संजना जी। और यहाँ के मौसम का मज़ा लेने काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो
1: हाँ
0: साफ
1: जी
0: सफाई का ध्यान रखें ताकि और जो भी आए तो उन्हें भी अच्छा लगे, है ना।
1: हाँ जी बिल्कुल अच्छा लगे, वेलकम है, आए वो अपना पूरा मजा लें वो आके। हाँ जी
0: मौसम का भी, नज़ारों का भी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी
0: संजना जी
1: बिल्कुल।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं आज?
1: आप बताइए कि कौन कौन सी फिल्में रही हैं।
0: अभी हमारे पास है मिस्टर इंडिया, लावारिस, कुरुक्षेत्र, जब तक है जान, हम तुम्हारे हैं सनम।
1: लवारिस का सुना दो,
0: कौन सा गीत?
1: कोई भी
0: कोई सा भी
1: कोई भी।
0: ठीक है, आपको सुनवाएंगी, लेकिन कुछ संदेश है वो आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद आपकी पसंद। शुक्रिया संजना जी
1: ओके
0: फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
3: ब्रो ये फटा है।
4: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
5: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
4: हाँ जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
6: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
7: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
6: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
7: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
8: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: तो श्रोताओं संजना जी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं लावारिस फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। और देखिए बहुत कम वक्त रह गया है तो जल्दी से कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी पसंद की फिल्म का गीत सुनिए।

सखियों, कार्यक्रम में इसी खूबसूरत से गीत के साथ हम पहुंच चुके हैं अंत में। अब मुझे यानी रीना को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति, इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। और माफ़ी चाहेंगे उन कॉलर से जो इस समय फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि वक्त नहीं है कि आपसे बात की जाए। तो यही कहूँगी, अगले मंगलवार ज़रूर समय से फ़ोन करें और अपने इस खूबसूरत से कार्यक्रम का हिस्सा बने।

0: चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जितेंद्र पाल सिंह।
1: बिकती नहीं जिस्म बिक जाते हैं, रूह बिकती नहीं, चैन बिकता नहीं, ख्वाब बिकते।
0: अब मुझे यानी रीना को दे कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। प्यारी सखियों नमस्कार।

0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 1:00 अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न

0: हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly. Army Chief General Upendra Dwivedi today said the Indian Army derives its strength not from any single individual but from the unwavering faith of its soldiers, commanders, veterans, families and the citizens of the country. General Dwivedi said this while relinquishing the appointment as the Chief of Army Staff in New Delhi today. He emphasized that serving in the Indian Army for over 4 decades has been his greatest privilege.
1: भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने
3: आर स्टेडफास्ट सोल्जर्स रिमेन्स डिप्लॉयड अक्रॉस माउंटेन्स डेजर्ट्स ग्लेशियर्स फॉरेस्ट एंड चैलेंजिंग बॉर्डर रीजन सेफगार्डिंग द नेशन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस दे हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल करेज एंड रेजिलियंस इन डाइवर्स ऑपरेशनल एनवायरमेंट्स फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट टू यूनाइटेड नेशन मिशंस देयर अनवेवरिंग डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म एग्जेम्प्लीफाइज द

बड़ा खूबसूरत तराना छेड़ देता है ये गीत। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं का आया, बहुत बहुत शुक्रिया। काला बाजार, देवानंद, वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज़ में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है, और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं वो तो बिल्कुल सोने में

सुहागा हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की भारत में एक अजीब सी तड़प भी है और अपनापन भी। लहरों के माध्यम से प्रेम, मिलन, विरह और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव हो उठता है। लहरों का उठना, ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं, यादों से उठती हैं। वे जब भी दिल के किनारे आती हैं, अपने दूर गए साथी से मिला जाती हैं, उनकी कई यादें याद दिलाकर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफ़र के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज़ एक है। सांसों के तार पर, देश की सुरीली धड़कन के ताल पर जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकराती हैं, तूफान उठाती हैं। रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं। कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं। चलिए, इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहाँ से सीपियाँ इकट्ठी की हैं? अगर ऐसा किया हो तो हमें ज़रूर बताएं। और कहाँ गए हैं, अलग अलग तटों पर, हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन गा रहा है और संगीत किनका है।

भाई कन्याकुमारी की बात की है जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, बहुत रोमांच होता है, ऐसी अनोखी दुनिया होती है, ये हमारे एक श्रोता ने बताया है उस सवाल के जवाब में जो हमने पूछा था कि समुद्र के किनारे आप कहाँ गए हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि मुंबई गए हैं। बाकी जवाबों का भी इंतज़ार हो रहा है, ज़रूर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और जल्दी से बताइए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आपने जैसे ही रिमझिम के तराने छेड़े वैसे ही हमारे यहाँ भी रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वाह क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं हम तो दीघा पश्चिम बंगाल गए थे। अब दूसरे सवाल की बारी, वैजयंती माला फिल्म मधुमती, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, ये जो गाना भी आपने सुना, सलील चौधरी का संगीत निर्देशन था, ये जवाब भी आ गया है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया है कि ना बाबा मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी ना जल महल और पानी से दूर ही रहती हूँ। ओहो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पानी का डर जो है वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहना के लिए मजबूर कर देता है। आप ये बताइए कि समुद्र के किनारे बहने वाली हवाओं का भी एक बड़ा ख़ास अहम भूमिका होती है, तो क्या कभी उन हवाओं के साथ आपकी कुछ मुलाकात हुई है जो तेज़ तेज़ हवाएं बहती हैं बारिश के समय में? अगर याद हो तो वो ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी जिन श्रोताओं ने नहीं बताया है कि वो किस समुद्र के किनारे टहले हैं या क्या बनाया है उन्होंने, जो घरौंदे बनते हैं उन घरौंदों को कई बार बच्चे भी बनाते हैं और आजकल तो बहुत सुंदर सा सेट भी मिलता है बच्चों के उन घरौंदों को बनाने वाला, वो अगर सेट किसी बच्चे को गिफ्ट किया हो तो ये भी बताएं। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनने के लिए आपको बताना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है। संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक और रिमझिम का गाना याद दिला दिया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लता मंगेशकर की आवाज़। वैसे तो रिमझिम शब्द वाला पहला सुना गीत मराठी है। रिमझिम पाउस पड़े सारखा, यमुनेला हुपूर चढ़े, पाणी च पाणी चहुड़के चहुकड़े। वाह क्या बात है। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि रिमझिम के तराने की गीत मालाई बुन रहे हैं और सभी मुखड़े उम्मीद के अनुसार, मंजिल ढूंढता गाना शुरू हुआ और काला बाजार पर रुक गया। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर की अपनी शांत गुफाएं हैं, गहरी शांत और एकांत, यद्यपि लहरों में उग्रता हो लेकिन उसके नीचे कोई शांति नहीं है। शायद कोई टाइपो एरर हुई है, अशांति लिखते हुए इन्होंने अशांति लिखना चाहा होगा। एक और श्रोता ने कहा है कि वैसे हम अपनी कुछ दिन पहले की एक बात बताते हैं आपके साथ साथ सभी हंसेंगे सुनकर, तो हुआ यूं कि हमारी बेटी ने कुछ पंक्ति लिखकर अपनी एक पोस्ट डाली स्टेटस पर समुद्र के किनारे की पिक के साथ, तो हमने उसे लाइक किया और लिखा कि हम लिखते तो कुछ ऐसा लिखते, तो जवाब में उसने लिखा आप दिल से सोचती हैं और हम दिमाग से, फिर हमने लिखा अरे नहीं हम विविध भारती सुनते हैं ना, तो उसका रिप्लाई सारा क्रेडिट मम्मी ने विविध भारती को दे दिया। फिर उसने ये बात सब दोस्तों को बताई, सब इतना हंसे ऑफिस में, तो सोचो एक छोटी सी बात ने कितनों को हंसाया। बस यही तो हम चाहते हैं, सब खूब हंसे वरना परेशानियां तो सबके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि जीवन दर्शन समंदर की भांति ही गहरा ही नहीं अपितु रहस्यमय भी है, भले ही हम उसके अंदर अपने कौशल विकास से केबल बिछा कर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है, क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है, और वो सवाल ये है कि इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं, तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

समझे बच्चे, हम यार है यारों के निभा देंगे यारी, यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी, अपना तो दिल है सादा।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदीवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा? ये जो हमारे साथियों ने बताया है समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो समुद्र कनाडा में इन्होंने देखा था कई बार और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नज़ारे को देख पाते। पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहां चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी

जाना हुआ कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहाँ जाया करते हैं। दुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था। क्या बात है। मुंबई के जुहू बीच 2-3 बार, अक्सा बीच और गोराई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। द्वारकाधीश और सोमनाथ गया हूँ समुन्दर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहाँ पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट गोते खाने लगी। तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर 2-3 बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूं। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया। थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथ ही अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज़, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज़ धूप है। ओहो, ये तो बहुत ख़तरनाक है। चलिए जल्दी हम दुआ करते हैं बारिश आएगी। एक और श्रोता कह रहे हैं कि VBS सर्विस, मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया, ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है। चलिए अब इसी बात पर अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूँ तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूँ, समुद्र में जाना तो दूर की बात है। वैसे हमारे साथियों ने ये ज़रूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास की का ये दोहा हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा, क्योंकि समंदर की काफ़ी नज़दीक रहती हूँ, अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं, लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएँ जब आप समंदर के किनारे हों। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विजाग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी केरला के कोवलम बीच की सैर करके आई हूँ, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा, कि बचपन इनका मुंबई में ही गुजरा था, समुद्र से गहरा लगाव है, जब भी हम मुंबई आते हैं तो जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या अन्य बीचेस में ज़रूर जाते हैं। धर्मपत्नी जब बच्चों के साथ होती हैं तो मैं चुपके से हर बार रेत पर दिल का शेप बनाता हूँ, धर्मपत्नी का नाम लिखकर आई लव यू भी लिखता हूँ और सबको बुलाता हूँ, तो धर्मपत्नी और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा तोहफा होता है और वहाँ का वीडियो भी सेव करके रखता हूँ। हाँ, हम यही बात कहने वाले थे कि ऐसे नज़ारों की तो फ़ोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुशनसीब हूँ जो समुंदर के किनारे रहती हूँ, मेरा बेटा रोज़ शाम को खिलौने लेकर रेती में खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियाँ इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियाँ मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है, और इसलिए समंदर को साफ़ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला, बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मज़े लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज़ की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नज़ारा वीडियो में आज तक कैद है, जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम गीत फिल्म का गाना अनीता राज का जिक्र किया, इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। यह दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगें उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल। क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज़ का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक शहर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फ़ोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप ख़राब हो गया। वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आएँ तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम ज़रूर आएँ। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूँ, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज से 2.5 घंटे का सफ़र पूरा किया, ये बताया है, नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए जी। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुँचें। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुँचें। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहाँ तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी

ये देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नज़दीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को। क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है।

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई, वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना नायिका जया भादुड़ी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और उनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे, हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था, एक तीन चार लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूँ। एक और श्रोता ने एक दोहा साझा किया है समुद्र तट के वर्णन के बारे में, रामचरितमानस।

दोहा है, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहाँ समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं वहाँ आज भी दो दिल एक ही ताल पर धड़कते हैं। मानो कह रही हूँ कि कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की इबारत, समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुएं, धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाएं, और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें। कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं। कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं। लहरें जिंदगी के सफर में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना ही इस बहते हुए जीवन की बाजी है। क्या बात है। और अब ये गीत सुनिए और बताइए स्वर किनका है,

ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज़ ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एसडी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे ज़िंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज दरिया समंदर नदियों की उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा, बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूँ, थकान मिट जाती है, शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है, यथार्थ में तो वो सागर का अंश मात्र ही हैं। काफ़ी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है कि आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहाँ व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफ़र तय किया, सुरीला सफ़र। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम। तो दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: शौक, शौक बड़ी चीज होती है ना? जो मन करे वो कर लेना, क्या यही शौक है? नहीं, जो मन को अच्छा लगे वही कर लेना, ये शौक है? ये भी गलत है। सही तो तब है जब हम वो काम करें जिससे हमारे मन को खुशी मिले और करते करते मन में आह्लाद यानी बहुत सारी प्रसन्नता आ जाए, उसे ही कहेंगे शौक। अब शौक जो है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शौक वो कार्य है जो अपनी खुशी, रुचि और मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। अब कई लोग होते हैं जो चित्रकारी करते समय कहीं खो ही जाते हैं। कई बार आवाज देने के बाद ही वो उस ओर ध्यान देते हैं। कई बार कोई खेल खेल रहा होता है, उसका ध्यान ही नहीं होता। कोई गाना गा रहा होता है, उसमें ही खो जाता है। और कोई तो किताबें पढ़ते पढ़ते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। नृत्य करने वाला अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है, और बागवानी करते करते तो कोई फूलों के साथ हंसना और बोलना शुरू कर देता है। शौक जीवन को आनंदमय, उत्साहपूर्ण बनाते हैं। और आज का जीवन कितना व्यस्त है, कितने तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं, तो ऐसे में जो शौक है ना, वो आपको ताजगी देते हैं और शांति प्रदान करते हैं। और इसी शौक के साथ में हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
1: पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा,
2: तो फिर
1: हमको तो नशा

0: से शादी शेख चिल्ली का ये ख्वाब, अरे एक जर्रे की ये जुर्रत छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में मरना भी है मुझको कबूल।
0: तो मरेगा?
1: हाँ जी मरेगा।
0: ये जो कहेगी करेगा?
1: हाँ जी करेगा करेगा।

0: फिर आपको भी आप नहीं बाप कहूंगा।
1: What?
0: ये जो कहे

0: ए हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब, आहे पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब।
1: शौक कब आता है, कहां से आता है और कैसे आता है, ये प्रश्न सबके मन में होते हैं। कभी कोई कहता है कि पिछले जन्म में यही काम करते रहे होगे, इसीलिए तो इस जन्म में उस चीज का शौक है। पर ऐसा नहीं है, शौक अलग ही चीज है। बस वो काम करते करते मन को सुकून मिल जाए और जिस काम को भी कर रहे हैं वो करते करते आत्मिक शांति मिल जाए, शायद इसे ही शौक कहेंगे। और ये जो शौक है इसके कई सारे फायदे हैं। मानसिक तनाव कम होता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं है, परंतु जबरन या आवश्यकता अनुसार उसे करना पड़ता है, और करते करते लगातार उस कार्य को करते करते जब बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं तो थोड़ी देर किंचित समय के लिए ही अपने शौक को पूरा करना शायद मन को शांति ही दे दे, और फिर से नई ऊर्जा के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं जो करने में हमें बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है। या आज के ज़माने में मोबाइल इंटरनेट पर रहने की जगह कोई व्यक्ति अपने शौक के काम करके अपना समय बचा सकता है और अच्छे कार्यों में लगा लेता है और व्यक्तित्व का विकास भी होता है।

अब एक और बात मन में आती है कि यदि किसी व्यक्ति ने शौक को ही पेशा बना लिया, जैसे बचपन से कोई गाना गाना चाहता था और वो गायक बन गया, जैसे किसी को बातें करने का शौक था और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे चित्रकारी का शौक था और उसने उसे ही अपना शौक, उस शौक को ही अपना पेशा बना लिया और निकल पड़ा इस दुनिया के उस युद्ध में जहां से उसे कमाना है पैसा भी और भोजन भी, तो इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? तो हालांकि इस बात से तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने अपने शौक को ही पेशा बना लिया तो और अधिक मेहनत लगन से आप काम करेंगे, उसमें नई नई आवश्यकताएं खोजेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, काम में खुशी और संतोष मिलेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाएगा, तनाव तो बढ़ेगा ही नहीं, सफलता और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ में होगी मानसिक संतुष्टि भी। तो कभी अगर मौका मिले अपने शौक को अपना व्यापार या अपना व्यवसाय बनाने का तो ज़रूर बना लीजिए।

अब एक और प्रश्न आता है कि बच्चों को किस चीज का शौक है ये कैसे पता करें। बहुत आसान है, माता पिता ही अपने बच्चे का मूल्यांकन करके उसकी गतिविधियों को ध्यान से देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। बच्चों को बच्चों की गतिविधियों से कैसे पहचाने, तो सबसे पहली चीज यह

देखें कि खाली समय में वह क्या करना पसंद करता है, किस विषय पर अधिक प्रश्न आते हैं। कभी उसे खेल खिलाएं, कभी संगीत की ओर ले जाएं, कभी चित्रकारी कराएं, कभी नृत्य कराएं। जिसमें वो अच्छा है वही उसका शौक है। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर

0: के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से

0: विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल

0: दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलट फेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ। एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर कार्यक्रम जिला की चिट्ठी रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की सलाह देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: शिमला के चर्चित मनीषा मर्डर मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पवन ने बताया कि मनीषा मित्तल का भाई हिमांक मित्तल ही उनकी हत्या का मास्टरमाइंड निकला है और उसी ने हत्या की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि मनीषा मित्तल का अपने भाई के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था और हिमांक ने अपनी बहन की हत्या करवाने के लिए दो शूटरों को सुपारी दी थी।
2: हिमांक के पास सरस्वती पैराडाइज स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का एक्सेस था, जिससे वह मृतका श्रीमती मनीषा मित्तल के आने जाने का सारा मूवमेंट ट्रैक कर सकता था। ये सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस हिमांक ने गोविंद को प्रोवाइड किया था। जांच के आधार पर यह सामने आया कि हिमांक ही इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था तथा हिमांक ने गोविंद के साथ मिलकर दीपक व आशीष को इस वारदात को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था। हिमांक को भी दिनांक 29/6/2026 को रोहतक हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया है।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संगठन विस्तार, राष्ट्र निर्माण में कार्यकर्ताओं की भूमिका और विकसित भारत के संकल्प जैसे विषय शामिल रहे। विधायक सतपाल सत्ती भी इस मौके मौजूद रहे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को अपनी शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्ति के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में स्पष्ट उद्देश्यों, अनुशासन और जिम्मेदारी की

0: भावना के साथ अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ। भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी अहम भूमिका निभाई है। पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और संयम के साथ किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है।
0: वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय नैना देवी में वाणिज्य संकाय और राजकीय महाविद्यालय जुखाला में विज्ञान व वाणिज्य संकाय बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताया है। उन्होंने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और कहा कि इन संकायों की बहाली से क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने घर के निकट ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को घर द्वार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में हिमाचल देश भर में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं लाहौल जिले की चिट्ठी। लेखक हैं सुरेंद्र कुमार और वाचिका हैं प्रभा शर्मा।
0: जून माह की शुरुआत पंचायती राज चुनाव के परिणामों के साथ हुई। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और लाहौल स्पीति विकास मंच के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कई वार्डों में अंतिम दौर तक रोमांच बना रहा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश से आदर्श आचार संहिता हटा दी, जिससे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग फिर से खुल गया। 15 जून को केलंग स्थित जनजातीय संग्रहालय में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने सभी जनप्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधायक अनुराधा राणा और उपायुक्त किरण बड़ाना ने सभी प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास और जनसेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करने का संदेश दिया। बाद में प्रदेश सरकार ने नई पंचायत संस्थाओं के गठन के लिए पुरानी पंचायतों को भंग कर पहली बैठक 27 जून को आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अतिरिक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीआर शर्मा ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शकोली का निरीक्षण किया और विद्यालय की कार्यप्रणाली की सराहना की। इस दौरान शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कक्षा 12वीं की टॉपर सिमरन, कक्षा 10वीं की जिला टॉपर विन्नी तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों आशा और ऋषिक को विशेष सम्मान मिला। खेल जगत में जिले के लिए एक और खुशी की खबर तब आई जब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शांशा के छात्र ऋषिक रवांक ने चयन हिमाचल प्रदेश की अंडर 18 एथलेटिक्स टीम में हुआ। अब वे सितंबर में देहरादून में आयोजित नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला व बाल विकास विभाग और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने छोटे बच्चों की स्कूल पूर्व तैयारी को मजबूत बनाने के लिए समर कैंप अभियान शुरू किया है। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की भाषा, गणित और अन्य बुनियादी क्षमताओं को खेल खेल में विकसित करने के साथ अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिले में 17 से 26 जून तक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों में विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। साइकिल रेस, दौड़, क्रिकेट प्रतियोगिता, संवाद कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केलंग में आयोजित सामूहिक योग शिविर के दौरान भी लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र द्वारा केलंग में फंडिंग एवं नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिला उद्यमियों को सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण, उद्यम पंजीकरण, डिजिटल विपणन तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ONDC जैसे प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई ताकि वे अपने व्यवसाय

0: आगे बढ़ा सकें। कृषि क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र कुकुमसेरी और इफको के संयुक्त तत्वावधान में खेत बचाओ अभियान आयोजित किया गया। किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देकर वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। जनसेवा का एक सराहनीय उदाहरण तब देखने को मिला जब घेपन झील से लौटते समय रास्ता भटके दो ट्रैकर्स को पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग, डीडीएमए और स्थानीय गाइडों ने संयुक्त अभियान चलाकर सुरक्षित रेस्क्यू किया। सभी एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई की लोगों ने खूब सराहना की। विकास कार्यों की बात करें तो विधायक अनुराधा राणा ने लगभग 26 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली केलंग सीवरेज योजना का भूमि पूजन किया। लंबे समय से लंबित इस परियोजना के पूरा होने से केलंग क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। जिले में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति बहाल होने के बाद प्रशासन ने नियंत्रण वितरण व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य व्यवस्था के तहत की जा रही है। माह के अंतिम दिनों में जहालमा नाले में अचानक आई बाढ़ ने मनाली, उदयपुर और पांगी किलाड़ सड़क संपर्क को बाधित कर दिया। लाहौल स्पीति जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे लाहौल जिले की चिट्ठी। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली है अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
4: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को, यानी बच्चियों को, ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते हैं अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
3: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
4: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
3: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से डिज़ाइन की शिक्षा प्राप्त की,
4: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनज़र उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
3: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
4: अब सरल भाषा बच्चों के लिए, यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
3: होगी, ये बहुत अच्छी पहल है
4: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियाँ बिना डर, बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
3: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
4: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना ज़रूरी है।
3: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके

0: सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रहीं।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज़ उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बच्चों बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है
1: बेटे और,
0: हाँ, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी,
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे। तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने ज़माने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस ज़माने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की ज़रूरत होती थी, इसलिए उस ज़माने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चलें। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा, उसके अंदर जो शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती हैं,
0: प्रमाणित करती हैं कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी होता है,
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें भी सब काम
1: जाया करो ट्यूशन स्कूल।
0: तो उसने कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था, तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहाँ पहुँच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी समझ। फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण में हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज़ उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा। मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता है मैं पहले दरवाज़ा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है।
0: हाँ, तो मतलब इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता हो।

0: एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को पोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस न चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे। हाँ,
0: हाँ, और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है,
1: हाँ
0: ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे
1: नहीं। और उन्हें ऐसा लगता ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो जो मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है तो कभी हंसी भी आ जाती है तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार VCR के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम नहीं लेती
0: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत। ओ मेरी, ओ मेरी।

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: दिया। ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उससे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहां फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम डैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की ये जो मासूम

0: तो बस वो देखते ही तुरंत उसको उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: बना
1: जी।
0: तो भाई ये कुछ
1: यानी उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि भाई इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे वो उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए, ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते हैं,
1: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाया भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती है,
1: बहुत होती,
0: तो बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया है, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं बच्चे,
0: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं,
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती, तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए।
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: गाने में है।
2: लकड़ी।

0: सोनाली देखिए, शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर जान में जान आई,
1: यानी दादाजी नाना जी रहे ना। तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं। बिल्कुल है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो भाई वो बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी बिकट होने लग गई है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का एकल परिवार। और सचमुच है ना, पुराने ज़माने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज़ ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की ज़रूरत है। और पुराने ज़माने में सब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नज़र आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुज़ुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमज़ोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्ट

0: started a new journey in radio as RJ on community radio. Enjoying a lot. I love radio since my childhood. विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है.
1: क्या बात है
0: भाई. इस तारीफ के लिए शुक्रिया. विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया. और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोच कर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है. और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा. ये तो सही बात है. एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता. सही बात है, समय नहीं होता. बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
1: है. पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ. नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे. तो पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए.
0: दोनों तरफ से होनी चाहिए. और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है.
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है.
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है.
1: सुनते हैं गीत.
2: ओ सजना

भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर

0: वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद, यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं।
0: सब पोल खोल दी
1: अंदर से पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएं कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया।
0: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज़ खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कह रहे हैं कि भाई डायबिटीज़ है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, और घर वालों ने किसी ने देख लिया
0: तो पानी पानी हो गए।
1: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए हैं ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, उन्हें जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो

0: अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्मपत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं, पत्नी वहाँ घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियाँ आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
1: सचमुच। और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
0: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफ़ी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मज़ा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: 103.4 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15
1: इंतजारी है तेरी।
0: फिल्म मुल्क
2: सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़
3: एक टुकड़ा अंदर अंदर
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
4: ए बेखबर
5: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
5: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
6: हाँ,
5: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
6: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
5: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
6: मुल्क का गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए।
5: जी,
6: बहुत अच्छा गाना है,
5: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
6: हाँ,
5: कव्वाली है।
6: यस यस,
5: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
6: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
5: जी में। बिल्कुल। हाँ, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ, इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
6: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
5: जी,
6: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
5: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
6: जिक्र
5: ये
6: किया
5: दर्ज
6: जाए।
5: होती हैं आज के समय में।
6: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
5: बिल्कुल।
6: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
5: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म

0: बेहद मकबूल कव्वाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक। पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
1: जी हाँ, जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप जी, बिल्कुल।
0: तो
1: आर्टिकल 15 से,
0: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
1: उस गाने की कहानी ये है कि
0: कोई दिलचस्प बात हो तो
1: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
0: पड़ा है इजाज़त फिल्म
1: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
0: अरे क्या बात है। हाँ,
1: उल्टा मतलब कि
0: सामान देना है।
1: हाँ, वो कह रहे लौटा दो।
0: हाँ,
1: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
0: हाँ,
1: ठीक है,
0: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
1: हाँ, तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मूमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है, है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
1: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो।
0: हाँ,
1: लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी
0: जी।
1: हाँ,
0: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
1: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
0: क्या बात है, वाह।
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर
1: है ना।
0: तो
1: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
0: रंगी है,
1: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
0: बिल्कुल,
1: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है
0: जी।
1: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफ़र। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए।
0: तो
1: अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलियाबाद वगैरह में,
0: और अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: हाँ, और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूज़िक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी हैं शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उनका फ़ोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है

0: कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग
1: जी,
0: बनता है
1: जी।
0: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
1: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
0: तो, हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
1: जी, जी, जी।
0: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
1: जी।
0: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
1: बेहतरीन फिल्म थी,
0: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
1: जी।
0: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है, सात रंग हैं सातों पिया के,
1: सात रंग हैं सातों पिया के,
0: हाँ सात रंग होते हैं
1: जी।
0: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
1: खुदा है,
0: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
1: छुपाऊं कैसे,
0: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी है ना,
1: दो अर्थी,
0: हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
1: रंग दिखाई,
0: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके
1: भाई
0: मैं उजली,
1: वाह वाह,
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए। अब ये देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ,
1: जी जी,
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है, ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना, हाँ, भी संदेश, हाँ, देता है, एक सब एकजुटता का संदेश,
0: बिल्कुल,
1: है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में, फिल्म धोखा।
1: हाँ,
0: MM क्रीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है MM करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे, मैंने रिकॉर्ड किया उसमें।
0: हाँ।
1: और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो।

0: और गाना लिखा, जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवा हो गया, जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवा हो गया वो गाना
1: जी।
0: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
1: क्या बात है।
0: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर।
1: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
0: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना
1: जी।
0: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी। मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
1: जी।
0: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी। सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
1: जी।
0: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो ऐ बेखबर ऐ बेखबर
1: जी जी जी,
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
1: जी,
0: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
1: जी जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं। हाँ। ये गाना।

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर ज़ारा का गाना है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गज़लें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गज़लों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गज़ल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गज़ल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गज़लें और पंकज उदास साहब की गज़लें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गज़ल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर ख़त्म हो रहा था
0: जी जी,
1: गज़ल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आज़मी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गज़लें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोज़र हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूज़िक कंपोज़र को, जो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज़र होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज हैं।
1: हाँ,
0: और
1: 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक

0: भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे की ओर चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको? पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था?
0: वो तेरा नाम था, बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
1: अच्छा।
0: तब मैं सूरत में रहता था।
1: जी जी।
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी फिल्म थी, अक्षय कुमार।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना।
1: वहाँ तनवीर खान भी के
0: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नज़र उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ क्या बात है।
0: ठीक है। तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊँगा, आपको भेज दूँगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओ क्या बात है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे।
1: जी जी।
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी ज़माने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूँ ना प्रोड्यूसर हूँ। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फ़ोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुक्कू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फ़ोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक

0: फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गज़ल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गज़ल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भले रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया, तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आज़ाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहाँ के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी,
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है, और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फ़ोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना, दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया।
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत।
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे। मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत ज़रूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, ख़ास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़में हैं जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी ज़िंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसकी कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी ज़माने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज़्म हुई उर्मिला, जब ये नज़्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण

0: रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं, तुलसीदास की जी हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
1: उर्मिला सखी वे मुझसे कहकर जाते,
0: हाँ हाँ
1: बहुत बढ़िया।
0: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों हैं उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया तब मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहाँ पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब हैं, गुलजार साहब हैं, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है। और किस तरह से मतलब हिंदू मैथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया।
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आँखों से देखा था जहाँ अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके ख़जाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फ़ज़ा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, ज़िंदगी बहुत कम है, आपके ही अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूँगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, ज़िंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत ज़रूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर अंदाज में आप कहें, एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ।

0: कि ठीक है वो आप आगे बढ़े। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर,
1: क्या बात है,
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल
0: उनके
1: पर।
0: हाल पर, मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: ठीक है,
1: क्या
0: मैंने
1: बात है,
0: उसे बदला नहीं लिया, मैंने
1: वाह।
0: मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते।
1: वाह
0: इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना,
1: जी।
0: शायरी में ज्ञान की बहुत ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर,
1: जी
0: रचनात्मक
1: जी
0: तौर पर आता है, तखलीकी तौर पर, तो वो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह
0: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है,
1: जी,
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह। तो
0: बिल्कुल
1: अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाज़त लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब,
0: आप भी बहुत
1: नमस्कार।
0: शुक्रिया ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: बोले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को है थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मंगलुरु लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में UPI के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने UPI की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

भजनों के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत। और कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में लोफर फिल्म से ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

युवा दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा मंच में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त पूनम। और दोस्तों, आज है मंगलवार और आज हम अपने दोस्तों के साथ चलेंगे किसी खास जगह की सैर करने। जी दोस्तों, आज के युवा मंच कार्यक्रम में हम बात करेंगे सैर सपाटा में किसी ऐसे स्थान की जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और सभी अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की प्लानिंग तो ज़रूर कर रहे होंगे। और गर्मियों के मौसम में सभी श्रोता ज़्यादातर पहाड़ों का रुख करने की सोचते हैं। और क्यों ना सोचे भाई, क्योंकि हमारा हिमाचल जो है वो तो वैसे भी मौसम और हरियाली के साथ साथ खूबसूरत पहाड़, झरने, मैदान और बहुत से देव स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, युवावस्था नाम ही है कुछ नया तलाशने का और बंदिशों को तोड़कर खुले आसमान में पंख फैलाने का और अपनी ज़िंदगी की किताब में रोमांच के नए पन्ने जोड़ने का। और आज का हमारा ये जो सफ़र है वो सिर्फ घूमने फिरने के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये सफ़र है खुद को पहचानने का, नई संस्कृतियों को गले लगाने का और अनजान राहों पर खूबसूरत से दोस्त बनाने का। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जल्द लौटेंगे जानकारियां और कुछ और बातों के साथ।

जी दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा मंच में। और दोस्तों, कहते हैं कि सफ़र खूबसूरत है और मंजिल से और भी ये खूबसूरत हो जाता है। और जब बात हो युवाओं के साथ सैर सपाटे की, तो सफ़र का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है। चाहे वो बर्फ़ से ढकी ढकी चोटियाँ हो या फिर कहीं पर ट्रैकिंग करने के लिए जाना हो, बहती नदियाँ में राफ्टिंग का रोमांच जो है होता है वो उसका नज़ारा ही कुछ और होता है। या फिर आप किसी गांव की सैर करने ही क्यों ना निकल पड़े, तो वो पल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और वो खूबसूरत यादें बनकर रह जाते हैं। और युवावस्था का असली मज़ा तो डिजिटल स्क्रीन से बाहर निकल कर इस हसीन दुनिया को अपनी आँखों से देखने में ही है। तो चलिए हमारे साथ इस सफर की धड़कन को महसूस कीजिए। और साथ ही हम आज बात करेंगे कि एक खूबसूरत स्थान की, और वो है हमारा जिला किन्नौर, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, दुर्गम है और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध ये जो है वो ये जिला है, जिसे देवभूमि का मुख्य केंद्र भी क्या माना जाता है। और दोस्तों, ये भी माना जाता है कि ये भारत तिब्बत सीमा पर स्थित जो ये ज़िला है वो अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, सेब के बगीचों, गहरी घाटियों और अद्वितीय हिंदू बौद्ध मिश्रित संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, किन्नौर का इतिहास और संस्कृति कितनी रहस्यमयी है ये हम सभी जानते हैं, और ये साथ ही साथ उतनी पवित्र भी है। और पौराणिक ग्रंथों में किन्नौर के निवासियों को किन्नर कहा गया है, जिन्हें देवताओं के दरबार में संगीतकार और नर्तक भी माना जाता था। और ये भी मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय कुछ समय जो था वो यहाँ पर भी बिताया था। और किन्नौर की संस्कृति में हिंदू धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म का जो अनूठा मिश्रण जो है वो देखने को मिलता है। और साथ ही किन्नौर में आज भी पुरानी जनजातीय परंपराएं जो है वो जीवित हैं। यहाँ के पारंपरिक पहनावे में किन्नौरी टोपी, हरे रंग की पट्टी वाली और ऊनी शाल जो है वो बहुत ही सिद्ध है। और एक दिलचस्प बात किन्नौर के बारे में यह है कि यहाँ पर स्थानीय मेले, पारंपरिक नृत्य और संगीत जो है वो बेहद ही जीवंत होते हैं। धार्मिक रूप से किन्नौर का सबसे बड़ा जो महत्व है वो है किन्नर कैलाश पर्वत, और शिव भक्तों के लिए ये स्थान जो है वो अमरनाथ और मानसरोवर जितना ही पवित्र है। और किन्नौर ज़िले के खूबसूरत गांव कल्पा की बात करें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक गांव है, जो कभी इस क्षेत्र का मुख्यालय जो है वो भी हुआ करता था। और ये समुद्र तल से लगभग 2960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कल्पा से किन्नर कैलाश पर

0: पर्वत श्रृंखला का सबसे अद्भुत और साक्षात नजारा जो है वो देखने को मिलता है। और ये भी माना जाता है कि सुबह की जो पहली किरण है और शाम की ढलती धूप में इस पर्वत का बदलता रंग जो है वो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो दोस्तों, किन्नौर ज़िले की खूबसूरती के बारे में और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और भी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक संदेश और उसके बाद एक और प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं के लिए।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

युवा दोस्तों, कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। और हम बात कर रहे हैं किन्नौर ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, किन्नौर ज़िले की सांगला घाटी और बासपा घाटी जो है वो इस किन्नौर की सबसे हरी भरी सुंदर घाटी इसे माना जाता है। और बासपा नदी के किनारे बसी ये घाटी सेब के बगीचों, अखरोट के पेड़ों और देवदार के जंगलों से घिरी हुई है। और यहाँ पर स्थित कमरू फोर्ट कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है, जिसके भीतर कामाख्या देवी का मंदिर है। और ये घाटी कैंपिंग, नेचर वॉक और जो ट्राउट मछली है उसे पकड़ने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सांगला घाटी के अंत में स्थित चितकुल भारत का आखिरी सीमावर्ती गांव है, और इसके आगे आम नागरिकों के लिए सड़कें जो है वो समाप्त हो जाती हैं। युवा दोस्तों, बासपा नदी के किनारे बसा ये गांव सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक जाता है। और यहाँ के पारंपरिक काठपुनी शैली के लकड़ी और पत्थर के बने घर और स्थानीय देवी जो मथी का मंदिर है वो वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। पर्यटक जो है वो यहाँ आकर हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा में खाना खाते हैं, और वो यहाँ पर खाना खाना जो है वो कभी नहीं भूलते हैं। इसके साथ ही रिकोंगपियो भी किन्नौर को हलचल भरा एक ये शहर है जो पर्यटकों के लिए मुख्य परिवहन और ठहरने का केंद्र है। यहाँ से भी किन्नर कैलाश का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। और इसके पास ही कोठी गांव है जहाँ जो देवी चंडिका का एक भव्य मंदिर भी है, जिसकी सोने की मूर्ति और नक्काशी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसे जैसे आप किन्नौर के आगे बढ़ते हैं हरियाली कम होने लगती है और कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा मरुस्थल जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें साथ में बहुत सारे आगे जो स्थान हैं जिसमें पूह और नाको जैसे गांव जो हैं वहां पर खुमानी के बागों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और नाको गांव में स्थित नाको मील एक बेहद पवित्र और शांत प्राकृतिक झील है, और सर्दियों में ये झील पूरी तरह से जम जाती है और इस पर आइस स्केटिंग भी की जाती है। और यहाँ पर प्रसिद्ध नाको मठ भी है जहाँ पर जाना है जो है वो आप नहीं भूल सकते। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किन्नर कैलाश परिक्रमा और ट्रैकिंग के बारे में। यहाँ पर साहसिक यात्रियों और धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद कठिन लेकिन अत्यंत पवित्र ट्रैक है। और इस पर्वत शिखर पर लगभग 89 फीट ऊंचा एक प्राकृतिक शिवलिंग भी है जो मौसम और दिन के समय के अनुसार अपना रंग बदलता है। हर साल सावन के महीने में आधिकारिक यात्रा जो है वो भी आयोजित की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी सैर सपाटा करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, अपनी छुट्टियों का आनंद जो है वो लेना चाहते हैं तो और खूबसूरत नज़ारे जो हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप भी किन्नौर वैली में जो है जाकर अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। और दोस्तों, दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे पास सीखने के लिए कितना कुछ है। याद रखिए, घड़ियाँ तो सबके पास होती हैं लेकिन वक्त सिर्फ उनके पास होता है।

है जो अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े एक नए सफर पर। और अब आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए रास्तों के साथ, कुछ नए चेहरों के साथ और ढेर सारे एडवेंचर के साथ। तब तक घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। और चलते चलते सुनवाते हैं अपने युवा साथियों को एक और प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित

बरेली में किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजा गराइंदियां। किसानवाणी कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:10 पर, जिसमें आज बात होगी राष्ट्रीय ई कृषि बाजार की। रात्रि 8 बजे सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज आप सुनेंगे गायक विशाल डडलानी के गाए कुछ फिल्मी गीत। हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांगदी आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कुछ पुराने फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि उचित साइंस, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानक

0: मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में जनता की अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। गडकरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, लेन अनुशासन बनाए रखने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने का आग्रह किया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोक भवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। उन्होंने गैर सरकारी संगठन एक्ट ह्यूमन द्वारा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित कृत्रिम अंग वितरण शिविर का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है और हर व्यक्ति में अपार क्षमता व शक्ति होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
1: 2014 में मात्र 7 राज्यों में हमारी सरकारें थी। आज 2026 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं कि सत्ता एक सेवा का माध्यम कैसे है, सत्ता में रहकर सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू कैसे करें। कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन्हीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन की और ताकत को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं।
0: शिमला जिला प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी, अनाज मंडी, लक्कड़ मंडी और ट्रांसपोर्ट गतिविधियों को शिमला शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शिमला में एक बैठक में बताया कि इसके लिए महली के समीप लगभग 300 बीघा भूमि का चयन किया गया है और आज अधिकारियों की एक टीम ने इस भूमि का निरीक्षण किया है। उपायुक्त ने कहा कि ये भूमि महली शोघी फोरलेन के समीप है, जिससे लोगों व आढ़तियों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, जल भराव और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। खरीफ सीजन के दौरान भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में खरीफ सीजन में मक्की व धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। हमीरपुर के कृषि उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। मक्की व धान की फसल बीमा के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने आज से दस्तक दे दी है। इनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला शामिल हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि इन जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में आज मॉनसून की वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और चंबा जिलों में मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दस्तक देने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में कुछ जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: तो आज 30 जून को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो मॉनसून ने पूरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को कवर कर लिया है, साथ में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू को लगभग पूरा कवर है। केवल कुछ एक क्षेत्र शेष हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू के। शिमला और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बहुत से क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो चूड़धार का एरिया जो शिमला का एडजॉइनिंग है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल एरिया है वहां पे मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा परिस्थितियां अनुकूल है कि जो शेष हमारे डिस्ट्रिक्ट है इसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा है और कांगड़ा का बहुत सारा क्षेत्र है, सोलन है, यहाँ पे आगामी 2-3 दिनों में मॉनसून का आगमन हो सकता है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम सुरमई सांझ में और कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार।

0: की आवाज में फिल्म है हाय मेरा दिल। गीत लिखा है एसएच बिहारी ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।
1: इजाजत हो।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म है शागिर्द।

झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो

नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ए दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गा।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

0: कार्यक्रम सुरमई सांझ में कुछ और फिल्मी तराने आपको सुनवाएंगे इस संदेश के बाद।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ।

0: मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सपनों का सौदागर लीजिए, इस फिल्म में सुनते हैं लता मंगेशकर को, और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: इतना

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अगर तुम ना होते से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गुलशन बाबरा के बोल हैं और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजां गराइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राइदियाँ ले करी हाजिर है। मैं ग्राम सेवक कने मेरे कने अन लंबरदार हो रहा तो सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई पहना जो ग्राम सेवक दी राम राम कने लंबरदार जी तो अंजो भी राम
1: भाई
0: राम।
1: राम राम ग्राम सेवक जी, साढ़े सारे किसान बागवान भाई भैन जो लंबरदार दी तरफ ते राम राम।
0: जी कने भाई लंबरदार जी मैं दिखा था तुहां सीधा ही खेतरे ते आइए टियाले घरे जाने भी टाइम नहीं लगा
1: दिखा
0: मुझे
1: भी ठीक
0: लगता
1: लाया तो हाँ पछाण लिया दे। अजकल दिखा दे कुथी ना कुथी चिक्कड़ ता लग गया ही होना
0: लग गया
1: है।
0: महाराज लग गया मैं ताई
1: तबे सौ
0: दिखा
1: तो हुआ
0: था
1: पर भाई किसाने दा काम ही ये है। ता
0: ना।
1: दिखा कल जड़ी बरखा हुई ना तिस कन्ने थोड़ा बहुता पानी जड़ा सह साड़ियां पटियां चाई गया ता जड़ा ऊरे लाने दा काम असा जोरा पकड़ लिया
0: बिल्कुल पकड़ना भी चाहिए
1: है ना
0: ना
1: जी।
0: लंबरदार जी दिखा
1: ता
0: भाई बोलदा
1: भाई
0: मौके दा फायदा उठाना चाहिए है।
1: कने उन्या भी दिखा ग्राम सेवक जी बोलते भाई नौई नू जड़ी सह सजी हो कने खेतर बाया सजिया लगदा
0: हाँ
1: है।
0: ये तो तुहां बिल्कुल ठीक लाया महाराज दिखा
1: ता गल इं है भी
0: जी।
1: एक जड़ी गप अज के तुहां छेड़ी है ता हुण हाँ गल करिए ना। अजकल साढ़े किसान भाई ऊरे लाने दा जोर है कने जड़ी हाँ ऊरी बाही हो है तिहा भी पुट्टा दे लाने दा भी तैयारी करा कर दे जियां पानी मिला है ता कोशिश होवा कर दी है ना।
0: जी जी
1: ता ये
0: जी
1: जड़ी मैं एक गल तुहां सुनान लगा भी जड़ी ऊरी है ना साड़ी ये भी एक संदेश दिंदी है भी दिखा साड़ी ऊरी कुछ खेतरे च पैदा होंगी है कने कुछ के पता नहीं कुछ खेतरे च जाई के लगना फलना फूलना कने तिथु तिना रौनक जड़ी सह लानी है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: सही
0: जी
1: हिसाब साड़ियाँ कुड़ियाँ चिड़ियाँ दा है पता नहीं कुछ घर
0: आहा
1: जमना है कुछ घर
0: ठीक ठीक
1: तिना
0: ठीक ठीक ठीक
1: बड़ियाँ होना कने कुछ घर जाई के तिना फली फूली के तिस घर समृद्ध बनाना
0: बिल्कुल
1: है ना जी।
0: बिल्कुल तो हाँ ठीक लाया लंबरदार जी दिखा पुराने टाइम च भी जड़ा ऐसा होंदा है ना
1: जी
0: कि जल वहाँ चार लोग बैठते थे ना टियाले पर तो तरह तरह या गप्पा लगदियाँ थी
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: कने महाराज दिखा टियाले पर बैठी के अहाँ कुड़ियाँ या दही छड़दे हे मंगी छड़दे हे है
1: हाँ
0: ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल जवानी पर ही गल होंदी थी
0: हाँ
1: सारी दी
0: जवानी पर
1: सारी
0: गल हो जाती ही
1: कने गल ही है भी यही गल हाँ या अपनी जिंदगी च अपनाइए ना
0: जी
1: तां दिखा तू हाँ भी जड़े धान होंदा ना कई तरह के अजकल घा जड़े ने सह ओ बड़ो बरूनी कई तरह का घा जड़ा सह जल हाँ ऊरी बांधे तो चुगी पाँगा
0: जी
1: पर
0: जी
1: जे तो
0: जी
1: हाँ ऊरी दे तिस बूटे धाने दे पुट्टी के दिखा तो तिस दे थल्ला जड़ा सह धान तिं लग्या होंदा है
0: हाँ
1: भी
0: बिल्कुल
1: धाने का
0: बिल्कुल
1: बूटा जड़ा ऐसा तिसी तिं पकड़ के बैठे होंगे तो सही हिसाब मैं गला करता हाड़ियाँ कुड़ियाँ चिड़ियाँ हाँ ब्याह भी देंदे पर अपने टबरे ने सह तिं जुड़िया रहनियाँ जिन्हें सह धान्या बूटा धान्य जुड़िया रहा
0: हाँ दिखा
1: है।
0: जी अपना माइका जड़ा है ना
1: हाँ
0: सहता
1: नहीं
0: भूलता नहीं ना
1: छुटता
0: कभी भी छुटता भी नहीं कने
1: हाँ
0: भूली भी नहीं सकते कने
1: बिल्कुल
0: महाराज भूलना भी नहीं चाहिए है ना।
1: नहीं नहीं है तो हाँ ठीक लाया पर साड़ियाँ
0: हाँ
1: किसान भैन जड़ियाँ ने सह
0: जी
1: मतलब तन मन धन कन्ने जुड़िया होंदियाँ तो जियाँ अहाँ गल करा करते थे ना पिछे रुलदू राम होर दे जड़े श्रीमती है ना
0: जी
1: तिन्हें
0: जी
1: दिखा प्योकियाँ दित्ती गा
0: अच्छा
1: है
0: अच्छा
1: तो गा तो सह जितने कर जिंदा रही सह सूई तो नहीं पर तिहा दी सेवा रुलदू राम होर दसते हैं बे माणु में तो ज्यादा होंगी
0: भाई दे तो
1: है
0: बड़ी बांकी गल है ना
1: ता प्योकियां
0: जी
1: दी ही ना दरअसल के
0: जी
1: सभी गल
0: जी
1: तो हाँ समझ आ थोड़ी
0: ठीक
1: है
0: बोला देखा ना। एक चीज़ भाई लंबरदार जी मैं और गलाना चाहूँगा
1: जी
0: कि दिखा जी जल वहाँ कोई धी नूँ जड़ी ऐसा अहाँ कोई ब्याह दे ना
1: जी जी
0: तो सांझो तिना यो अपनी बेटी समझी के तिना कने सारा व्यवहार करना चाहता है ना।
1: बिल्कुल तो हाँ 16 ने गल गलाई
0: हाँ
1: मेरे मुम्मे की
0: ए
1: गल खोई ले तू
0: आ
1: हाँ
0: हा
1: है
0: हा हा हा
1: भी अगर सहदया व्यवहार हुई है तो मैं तो बोलता है कोर्ट कचहरियां बंद हुई हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भी जड़ा अजकल का हिसाब चलिया है ना
0: जी
1: तिस
0: जी
1: कन्ने तो लगा करता भी कलयुग पूरे जोरे पर है तो सांझो सारे मिली जुली के जड़े बड़े बजुर्ग हैं तिन्हें भी घरे बसाने वाली गल करना चाहिए कन्ने भी कोई छोटे मोटियां गलतियां अगर रेह भी जान साढ़े नौ बच्चे अजकल पढ़ी लिखी निकला दे घर च गां जाए
0: नहीं दे
1: चूल्हा
0: पा
1: चौंका
0: दे
1: संभाला
0: टाइम
1: दे।
0: नहीं दे पा दे चूल्हे
1: हाँ
0: चौंके टाइम नहीं दे पा दे खेती बाड़ी टाइम नहीं दे पा दे
1: जी
0: तो भाई ऐसे स्थिति च साढ़े जिम्मेदारी ये बनती कि यहाँ ते ना बच्चे हो अपने बच्चे से सिखाइए
1: सिखाइए
0: है
1: बिल्कुल
0: कने
1: बिल्कुल
0: जे अगर कोई गलती हो दी तो ना यो डांटने दी बजाय प्यारे ने समझाई कि यहाँ से काम लइए है
1: बिल्कुल तो हाँ गल
0: ना।
1: गला दे पे दिखा टब्बर ता है बोलते ना पे अगर गड्डी चलनी है ना तो सह दो टायरों पर चलनी है तो जे तो हाँ एक ही टायरे उठाएंगे तो फिर सह गप नहीं बननी है समाज का पहिया जड़ा सह टुटदा है तो
0: बिल्कुल
1: सो चाहिए कि मिली जुली के अपने परिवार को अग्गे बधाइए कने ना बच्चे ही छोटी मोटी गलतियां जड़ियां सह तेना नज़रअंदाज करके कने भी
0: तिन्हें सिखाइए कने
1: सिखाइए
0: रलने मिलने दी गल जड़ी ऐसे तिन्हें समझाइए
1: समझाइए
0: है
1: बिल्कुल तो
0: ना
1: सोलह ने गल गलाई कने एक और ग्राम सेवक जी गल ही है
0: जी।
1: भी

0: आया तां
1: हाँ
0: असां कहनी नहीं अपना पढ़िया लिखिया दिमाग ते ना खेतीबाड़ी च लाई के अपनी खेतीबाड़ी जो समृद्ध करी सकदे कने अपनी आय भी तेतु ते जल तक तुहानू नौकरी नहीं लगदी तल तक तुहां तिसी ओ करा
1: जी जी जी
0: है ना
1: जी
0: जी।
1: जी
0: तां साड़ियां पट्टियां जड़ियां ने सा क्या खिलियां रहन फिर तां
1: हाँ
0: इह
1: हाँ
0: गलबात साड़ी गांह भी तो अपने किसान साथियों कन्नै जारी रहेंगी
1: बिल्कुल
0: लेकिन संझा
1: बिल्कुल
0: दा बेला अज मैं भी थकी के पुजे है कहने साड़े किसान भाई भी थके होने
1: जी
0: तां
1: जी
0: अहां इक
1: जी
0: सोहना दिया लोकगीत अपने किसान साथियों सुनाना ताकि थकान उतरे तां
1: बिल्कुल।
0: आओ सुनदे प्यारा दिया लोकगीत।
1: पर इससे पहले एक संदेश सुनी
0: जी
1: लेंदे
0: जी
1: ने ना।
0: जी
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई वाह जी वाह, लंबरदार जी,
1: रौनक
0: रौनक
1: अलग
0: लगी
1: ही
0: गई
1: है,
0: है,
1: बिल्कुल
0: मजा
1: भाई।
0: आई गया, आनंद आई गया भाई। पर देखा थोड़ी थकावट दूर हुई कि नहीं हुई, ये नहीं मिंजो पता, था भी
1: भाई देखा,
0: अगर मेरे
1: लोग
0: ख्याल में
1: इतने
0: तो
1: सुनी
0: कम
1: के
0: था,
1: कुदा
0: अगर
1: दिल
0: था
1: नहीं
0: तो अब
1: आराम दा,
0: अंधेरा
1: है
0: नहीं
1: ना
0: रहेगा।
1: जी जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: गाली है भी। असा गल आई थी भी अपने युवा साथियों ने,
0: जी
1: है
0: जी
1: भी जेड़ा सा जो अपने समाज जो अग्गे बधाना है, माड़ियां मोटियां गल्लां घरे च छोट मोटियां भांडे खड़कते रहेंदे हैं,
0: जी जी
1: तां भी बोलदे भी माँ बब्बा दियां गाली या सस्सू सहुरे दियां गाली जिहड़ियां है दुद्धे घ्योइयां नाली है। जे तुहां ये सोची के घर च रहेंगे तां सुखी रहेंगे, कने जे तिसदा मतलब एक पैसा तिना दिता कने चार पैसे तुहां होर ढाई के देने, तां फिर खड़ाका तगड़ा होना
0: बिल्कुल,
1: है।
0: कने दिखा जी फ्री घर गृहस्थी जरा से घड़ा कलेस नहीं मुकी सकता कदी भी।
1: हाँ, तिस घरे कोई शांति नहीं पजाई सकता, चाहे तुहां लखा पैसे कमाई लिया।
0: जी
1: तां गल ही है भाई जितने के तुहां ये चाहंगे कि भई अपने किसान साथियों ने भी कने अपने युवा साथियों ने भी अहां ये आग्रह कर दे कि भई जियां अपने घर बार का काम कार चलिया, जियां तुहाड़े जिथू तुहाड़ा मतलब ब्याह हो गया, मैं तो यह बोलगा है ना जी,
0: जी
1: तां ते तिना का जड़ा कम कार है तिसियो पूरे तरीके ने समझा कर, तिना ने हथे ना हथ बटा ताकि जड़ा तिना का गड्ढा ऐसा भी तौली चल है।
0: बिल्कुल
1: कने
0: बिल्कुल
1: इं बे जी एक आदमी पट्टिया च कष्ट होआ करता, कने बाकी सारे घर मंजे ताणी सुत्यो तो कदे गल नहीं बननी है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: अगर
0: जी,
1: तुहाड़े
0: सारे
1: समय है तो जरूर।
0: जिम्मेवारी जड़ी ऐसे सारे
1: हाँ
0: समझना चाहिए,
1: हाँ
0: कने सारे रली मिली के काम काज करन, ता ही जड़ा ऐसे कार कृष्टि चली सकती, कने भाई सुख सुकून भी ता ही मिली
1: मिसकून
0: सकता है
1: मिलना।
0: ना।
1: दिखा ग्राम सेवक जी, मैं तो यह गलांगा भी अज 3600 बीमारियां जड़ियां सै फैलियां न चौनी पास है ना
0: जी
1: जी।
0: जी जी
1: कने अगर तुसा अपने घरे च अनाज उगा कर दे तिदी कीमत समझा भी क्या है, तिदा तुहां सर स्वाद दिखा अपनी देख रेखा, जालू तुहां मेहनत करी कोई चीज़ उगानी है ना, तो मनी लिया तुहां चौल ही उगाए, तो जालू खा मेहनत करके कमाया होगा तो इस स्वाद कने मुस्कां भी अलग अलग आउंदियां,
0: जी जी
1: खुशबुआं अलग अलग
0: हाँ
1: आउंदियां, जालू
0: हाँ
1: आपू
0: हाँ
1: कमाया
0: हाँ
1: होगा था।
0: ठीक ठीक
1: कने
0: ठीक
1: जे बाजारे दी बोरी खानी तो सह तुहाड़ी मर्जी है ना जी। तो कई तरह दी बीमारियां अजकल जड़े ने दवाइयां 36 तरह दी दवाइयां होवा करदियां, तो अहां अगर अपने तरीके ने अपनी फसल उगाएंगे, कम से कम ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने जोगी तो होगा है ना जी।
0: जी जी
1: तो इन्हें
0: बिल्कुल
1: गल्लों का जरूर ध्यान रखा, कने अहाँ अपने किसान साथियों भी बोलना चाहेंगे कि इस टाइम जड़ा है कई किसान साथी जड़े ने खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करा कर दे।
0: जी।
1: किसान साथियों बड़ी बारी परहेज रखने की जरूरत है, अपने मुँह में मास्क होना चाहिए, सिर मुँह ढकोया चाहिए, हाथ जड़े ने सह क्या बोलते दस्ताने लगे हो चाहिए थे नहीं है ना
0: जी
1: जी।
0: जी बिल्कुल
1: कोई भी किसान साड़ा नंगे हथे नंगे मुँह में नंगे सिर है जड़ा सा ऐसा दवाइया छिड़काव ना करे, अज तो जवानी तो जो कोई फर्क नहीं लगना, लेकिन 5-7 साल बाद ये दवाइयाँ गलानियाँ नहीं पे मैं असर लगी हो करना, ये 5-7 साल बाद पता लगता कि क्या हुआ करता। तो इससे पहले अहाँ आगाह हुई है कि जितना मात्रा साढ़े वैज्ञानिक डॉक्टर दसते हैं उतनी ही मात्रा तो हाँ इस पानी है, ये नहीं पे पिछली बार घा थोड़ा घट जलिया है वह थोड़ी और पाई दे दो चार बूंदा
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो इन्हें
0: बिल्कुल
1: गलों जरूर ध्यान रखना है, कने सावधानी जी सब बरतनी है, ता
0: जी
1: ही असा इस सृष्टि जरा प्रकृति बचाई सकते।
0: जी ता थोड़ा देर ध्यान हाँ लोक गीत का भी रख
1: आहा
0: देना,
1: हा
0: कने सुन देने प्यारा दिया लोक गीत।
1: हा जी।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

0: सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: किसान साथियों संजय दी बेला तुहानू लोकगीत कने संदेश भी सुनाया कने ग्राम सेवक जी गल ही है भई अजकल जड़ा हुण बरखा होई गईयां कने साढ़े किसान साथियों जड़ी चरी बाजरा बाया है सभी पहले तो जड़ा हाँ धुप्पा पर जड़ा बोलते बड़ा गर्म लगता पशु है ना तो हूँ थोड़ी बरखा पईयां तो थोड़े पाने वाली मतलब हरा चारा हाँ पाई सकते हैं
2: पाई भी सकते कने महाराज देखा कई क्षेत्र जड़ा इंसा है अगर जिन्हें नहीं लगाया ना कोई अपने खेत्र खाली छड़े ना तो सभी हाली बाही सकते कुछ भी अपने खेत्र साग सब्जी पाई दिया कोई हरा चारा पाई दिया जेड़े खेत्र से खिले नहीं छड़ने
1: नहीं नहीं बिल्कुल तो ठीक लाया कने अजकल दिखा कहो कद्दू खीरा डानी कई तरह दियाँ बेल वर्गी सब्जियां जड़ी से लगदियां कने ओतड़ियां चाह गलांगे भी अजकल पानी लगी जा हुण तो तुहां जड़े ओतड़ी वाले बीज हैं सभी तुहां लाई सकते कने ये सब्जियां भी तैयार करी सकते तो आशा करनी भी साढ़े किसान साथी जरूर इस गल्ला दा भी ध्यान रखे कने अपनी खेतीबाड़ी जो हरा भरा करके संजा दा बेला है कने चलते चलते एक होर प्यारा दिया लोकगीत तुहां सुनाई देन तां
2: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: तां आओ सुनदे प्यारा दिया लोकगीत।
3: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान साथी संजय दी सा बेला च प्यारा दिया लोक गीत तुहानू पसंद आया होना। इसी लोक गीत कन्नै तुहानू दसीए बई अपने खेतीबाड़ी दी जड़ी हाँ ग्राम सेवक जी गलबात करा करते थे बई अपने किसान साथी जड़े न जोर शोर कन्नै जारी रखे बरसात जड़ी सा लगभग उतरी आई है कन्नै अपनी खेतीबाड़ी जो ये भी अहां गलाना चाहेंगे बई अगर मोटे अनाज की खेती तुहां करन तां सभी बड़ा अच्छा रहना। मां जड़े अहां बांधे थे हुण भी कोशिश करा कि बई दोबारा ते इस कम्मे अहां बधाई सकीए।
1: बिल्कुल
0: है ना जी भाई हाड़े इतों के माँ भी बड़े मशहूर होंगे थे बी मोटे अनाज में दिखा तो हाँ कोदरा है ना जी तो यह चीज़ा भी बंद थे किसान साथी कम से कम अपने खाने तक जरा जरूर इन्हों मोटे अनाज का प्रबंध जरा अपने तरीके ने करा कने इस समय बड़ा अच्छा लग्या कने बड़ी गल है कि अजकल बरसात लगी है नए फलदार पौधे भी तो हाँ जरूर लगा। इसी कने मौजा ग्राइन कार्यक्रम में संपन्न होकर संपन्न करने से पहले तुझे दसीए इस कार्यक्रम से सू तकनीकी सहयोग दिता सुरेंद्र कपूर ने कने इस कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जतेंद्र पाल सिंह इसी कन्नै ट्याले दे लंबरदार
1: कन्नै ग्राम सेवक जो कार्यक्रम संपन्न करने दी दिया अनुमति।
0: अच्छा जी जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि

0: वडोदरा देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान साथियों, सारे किसान बागवान भाई भैन जो लंबरदार की तरफ से राम राम, कने मेरे कन्ने साथ दिया कर दें ग्राम सेवक जी, तुहां जो भी मेरी तरफ से राम राम
2: जी। राम राम लंबरदार जी, राम राम। कने एक बारी फ्री ट्याले पर हाजिर हो ही चुके हैं, असा ढेर सारी जानकारियां मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोक गीत लेकर ही, तो एक बारी फ्री ते ग्राम सेवक दी तरफ ते भी सारे श्रोत्या जो, सारे किसान बागवान भाई भैन जो राम राम।
1: बिल्कुल तुहाड़ी राम राम कबूल होई। कने गल इ है कि किसान साथियों भी इस कार्यक्रम च असा

0: हमेशा खेतीबाड़ी ते जुड़े हो, नए नए तरीके, नवी स्कीमां इहदे बारे च तुहाड़े कन्ने गलबात करदे रहिंदे।
1: जी
0: इस वारी अज जिहड़ा है सा हाँ प्रधानमंत्री ई कृषि बाजार दे बारे च तुहाड़े कन्ने गलबात करनी है कि ई कृषि बाजार जिहड़ा है सा जियां अजकल इंटरनेट दे माध्यम कन्ने हर व्यक्ति जुड़िया है, साडे युवा साथी जिहड़े हन जुड़े हन, साडे किसान जिहड़े हन सभी ग्राम सेवक जी पूरी तरह दिखा करते भी ई कृषि बाजार च क्या मूल्य हुआ करता, अलग अलग मंडियां दा जिहड़ा सारा हिसाब किताब है सा तुहानू ई कृषि बाजार च मिली जाना।
1: जी जी बिल्कुल
0: कन्ने ग्राम सेवक जी ये भी गल है कि भई कई तरह दी स्कीमां हुई या अज तुहां मौसम ही दिखा, अज किसाने हो मतलब अगर मौसम दे बारे च कुछ जानकारी लैनी है तो फट हाँ फोन ते कड्डी के पता लाई लैंदे भी बरखा कितनी होआ करदी, कल्लू होआ करदी, कने कितने परसेंट बरखा बोला करदे हैं। तो ये सारियां सुविधा जड़ियां ने साढ़े किसान भाइयों ताई साड़ी सरकार जड़ी सदिया करदी है। तीयें ही जड़ा ऐसा ई कृषि बाजार की अगर गल करिए तो ई कृषि बाजार जड़ा किसान साथियों इस विच सारियां मंडियां जड़ियां ने सै एक नैटवर्क के माध्यम कन्ने जुड़ियां
1: जुड़ी
0: ने,
1: जुड़ी
0: तो इस विच सांझो अपनी आस पास दियां मंडियां दा सारियां दा भाव जिहड़ा सा पता लगता कि कुछ मंडी च कुछ चीज़ा दा कितना भाव है। तो जियां साढ़े किसान साथी कई तरह दियां फसलां उगांदे हन, अगर सा ई कृषि बाजार कन्नै जुड़न तां इसदा जिहड़ा असां पता लगाई सकदे कि मेरी फसल दा मूल्य जिहड़ा सा कुछ मंडी च कितना
1: बिल्कुल
0: है
1: तो
0: ना जी।
1: ठीक गला दे लंबरदार जी। दिखा अहां लोग जड़े से किसान भाई जड़े ने से बड़ी मेहनत कने अपनी फसल जो उगांदे न,
0: आहा
1: और जालू फसल उगदी है ता अगर तिस फसल दा एक अच्छा मूल्य ना मिले ता निराशा होंदी। पर ये जड़ी राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना है ना जी, इस विच साड़ा किसान भाई जड़ा से निराश नहीं हुंदा। कई कि अगर कुसी मंडिया च तिना यो लगदा है कि भई इस मंडिया च उन्हां दी फसल दा जड़ा ऐसा घट रेट मिला करदा है, तां असें अपने आस पास दी होर मंडियां दा भी जेहड़ा ऐसा भाव दिखी सकदे, ऑनलाइन दिखी
0: जी जी
1: सकदे,
0: जी बिल्कुल
1: इंटरनेट दे माध्यम कन्नै दिखी सकदे, कन्नै तित्थू ते पता लगाई सकदे भी मिंजो अपनी फसला दा जेहड़ा ऐसा अच्छा और
0: लाभ कुतु
1: वधिया
0: मिलना
1: लाभ
0: है।
1: जेहड़ा ऐसा कुत्थू मिली
0: जी
1: सकदा
0: जी
1: है ना। और खरीदने वाले हो जो भी पता लगी जांदा भी कुण दे चीज जेहड़ी ऐसा मिंजो कुत्थू सस्ती मिला
0: जी
1: करदी है
0: बिल्कुल
1: ना। तां दोन्ही पक्ष जो जेहड़ा ऐसा ये बड़ी फायदेमंद योजना है, तां इस योजना दा जेहड़ा ऐसा साढ़े किसान भाई लाभ उठा भी करदे न, कने जेहड़े उठाना चाहुंदे न भाई सै भी जेहड़ा ऐसा अपना पंजीकरण जेहड़ा ऐसा राष्ट्रीय ई कृषि
0: पोर्टल
1: बाजार
0: पर
1: पोर्टल
0: जी
1: पर जाई के करी सकदे न, है ना।
0: जी तां इह गलबात जिहड़ी ऐसे साढ़े किसान साथियों जरूर सीखनी है। हाँ खेते च तां कम करना ही करना है, कने कने जिहड़े नई तकनीक जिहड़ी साढ़े कन्नै जुड़ा करदी है तिसदा भी लाभ जिहड़ा सा हाँ लैना है। तो इस
1: जी
0: गलबात के बाद एक बार फिर ते अहां किसान साथियों रौनक की तरफ लेके चलना है, तां सुना जरा कोई रौनक।
1: जी बिल्कुल।

0: यानी कि ये बोली सकते हैं कि चाहे वह फसलों के बीज हो या फिर सब्जियां दे फुलां दे हाइब्रिड बीज तो लगाते हैं।
1: हाइब्रिड बीज सिर्फ पोलियो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शक्ति जी, जी तो दस्या कि जड़े पुराने बीज हैं सह भी बाह करते हैं, तो पुराने बीज दसगे कौन कौन कहते बीज हैं बाल?
1: बंसी लगाई काली कणक होंगी, बाकी सोना मोती दा नंगा जो दा
0: अच्छा,
1: करा दे कम देसी मारे सब्जियां दे जेड़ा पुराने घीए कद्दू
0: हाँ हाँ जी हाँ जी भिंडियां
1: हो
0: गई हैं, हाँ जी
1: भिंडियां हो गई, बाकी दालां च मारे रोंग वगैरह कुल्थ हो गई पुराने।
0: अच्छा
1: पुराने बीजां दा ये है कि बाड़ियां घट होनियां,
0: हाँ जी हाँ जी
1: गलत सीजने के हिसाब से नहीं परफॉर्मेंस बहुत वधिया होंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाइब्रिड बीजा पर खर्चा उतना ज्यादा आई जाता
0: है, हाँ जी हाँ जी
1: ज्यादा ही करा दे।
0: हाँ जी शक्ति जी, जी दस्या कि पुराने बीजा जड़ा सा तिना जो जड़ा तो बाहना शुरू किया, ये तो कुतु ते प्रेरणा मिली कि नहीं हट के फिर ही वह पुराने बीजा जो संभाले जाए कना उना दी जड़ी सा खेती की जाए?
1: जेड़ा क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग रिलेटेड है।
0: अच्छा
1: बाकी कंपनी च काम कर दे ता 2012 च वापिस घर आइए खेती करना लगे ता जेड़ा ट्रेडिशनल हमारे मेथड हुंदे थे इन्होंने कीती,
0: हाँ जी
1: बाकी विभागां दे जी जानकारी मिली थी करने लगे थे, पर पिछले 3-4 साल ता दिखा कि मुश्किल है फ्यूचर बीच ऑर्गेनिक करने लगे तो कि टाइम में 2018 च नौनी यूनिवर्सिटी च एक महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम था नेचुरल फार्मिंग रहा किता, तो इसमें सोगी गल जुड़े तो पता लगा कि देसी बीजा का क्या महत्व है, इसके बाद देसी बीजा बढ़ जाता है।
0: हाँ जी अच्छा, तो 2018 तो जरा सा प्राकृतिक खेती करा कर देना?
1: जी जी
0: हाँ जी दिखा कने प्राकृतिक जड़ा सा बिल्कुल तो एक बड़ा अच्छा एक बड़ा बांका काम जड़ा सा शुरू कितिया कने दिखा यहाँ ए तू बैठे जड़ा सा इतना महसूस करा दे कि जड़ा इलाका सा कितना हरा भरा होना, दिखा पक्षी पूरे चहचहा दे पूरे। अच्छा शक्ति जी, ता जल तो प्राकृतिक विधि कने जल तो खेती शुरू कीती ही ता तो जो क्यों कुछ शुरू च कुछ ऐसी कोई दिक्कत आई कोई परेशानी जी हाँ सुने या कोई गलांदे ने कि उत्पादन घट होंदा शुरू च?
1: जी बिल्कुल, मैं 2014 के करीब केमिकल फार्मिंग होंगी हमारी,
0: हाँ जी
1: खादा वगैरह पाते कर देते इस दे मैं ऑर्गेनिक करना लग पे दिखता 100 रुपए बड़ी गल है कि पैसा तो पैसा जल वहां उगांगे कने बेचगे पिछले होना ता ऑर्गेनिक रेट ठीक मिलता है तो पिछले करा दे ये बीच क्या है कि 18 च जल नैचुरल फार्मिंग के कॉन्सेप्ट भर गए हैं जो सुभाष पालेकर वाला है,
0: हाँ जी
1: हमारी जमीन लगभग बनी भी गई है
0: कने, हाँ जी
1: जमीन ना बनने पर सर की तहां दिश्च प्राकृतिक घटक कितने की पा दे या कहना अपना क्लाइमेट कितने बना दे दिश्च जो फील्ड एरिया,
0: हाँ जी
1: प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही रहेंगी।
0: अच्छा
1: हाँ जी, बाकी थोड़े कुछ टाइम बाद साल 1.5 साल के बाद थोड़े खर्चे नेचुरल तरीके ने घटना शुरू हो जाए जो थोड़े बीमारियां दा कहना,
0: हाँ जी
1: जल कर दे तो पता लगता।
0: हाँ जी जी शक्ति जी, जेड़ा तुहां दा उत्पादन हुंदा इसी जे कुतू बेचदे तुहां फिर जियां बेचना होवे ता?
1: सर इहदे विच मारा इक स्टॉल भी लगदा धर्मशाला डीसी ऑफिस बार।
0: अच्छा प्राकृतिक खेती पर गल करदे हन कितने की जड़े से पशु तुहां घर रखी हो देसी गाय पाली हो घर?
1: जी देसी गाय रखी एक दो गाय बड़िया जर्सी दियां ने,
0: हां जी
1: दोगलियां जर्सी सोगी देसी वालियां।
0: अच्छा अच्छा,
1: मुर्गियां रखियां कड़कनाथ करियां सोगी।
0: अच्छा बकरियां कौन जड़ी नस्ल दियां ने?
1: बकरियां हमारी लोकल नस्ल है।
0: अच्छा देसी देसी पहाड़ी बकरी जड़ी होंदी है ना?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: दिखा शक्ति जी, हाँ जो बड़ी खुशी होंगी कि जलो दिखा अहा ने पढ़े लिखे जलो युवा किसान जलो अहा कने जुड़दे हन ता तिना ते जड़ी सह अहा दे जड़े सुनने वाले श्रोता हन तिने भी जड़ी सह प्रेरणा मिलती है कि सह भी जड़े सह पढ़ी लिखी की भी ऐसा नहीं अगर जड़ा सह नौकरी नहीं मिला करदी है अपना खेती का काम भी जड़ा सह करी सकदे हन।
1: कभी फील नहीं होता मान जी सकला,
0: हाँ जी हाँ जी
1: नौकरी नहीं की जिस कमे ने अहा जुड़े इसने जलू पेड़ पौधे लगाने तो पर्यावरण कितना स्वच्छ होना है।
0: बिल्कुल हाँ जी हाँ जी,
1: अपने प्रोड्यूस अपने घरे वास्ते,
0: हाँ जी
1: आजकल तो जी पता ही है मिनिमम 4-5 हज़ार रुपये सब्जी ऑलमोस्ट सारी फैमिली च लगती लगती।
0: बिल्कुल
1: अगर इन फैक्टर देखना हाँ तो खेती बाड़ी जमीन है मान जी अजकल तो वैसे लीज पर लेके भी काम करा दे।

0: जरूर इस फील्ड च होना चाहिए कि सरकार भी
1: हाँ जी
0: बहुत स्कीम चलाई होगी ना।
1: शक्ति जी, इतनी जड़ी सा खेतीबाड़ी करनी है, इतनी ज्यादा जमीन च ट्रैक्टर वगैरह ना करते होने, बैल तो नहीं रखे होने हुण?
0: हूं तो पहला तो जमाना चली है ट्रैक्टर, बाकी एक जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट है
1: अच्छा
0: कि हाँ घट से घट खुदाई कर दे। ट्रैक्टर हाँ रखे पर सफेदा पर इस तरह काम करा दे कि ट्रैक्टर जल्दी चलाना तो फ्यूल भी लगना, खर्चा एक्स्ट्रा होना हमारा।
1: हाँ जी
0: बड़े बड़े हूँ बड़े तरीके भी आई हो
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: हाँ एक जीरो टिलेज पर भी करा दे काम।
1: जी तुहां दस्या कि तुहां प्राकृतिक जड़ा सा खेती पर प्रशिक्षण लिया, इदे अलावा और भी कोई ट्रेनिंग कीतियां खेती दियां?
0: जी मशरूम दी कीती है, बाकी फुलां दी काफी ट्रेनिंग कीती है।
1: तुहां तां जड़ा फुलां दा उत्पादन हुंदा, फिर फुलां को तू भेज दे, तुहां क्या कर देना फुलां दा?
0: लोकल इत्थे मंदिरें च देंगे, बाकी डेकोरेशन दा थोड़ा अपना।
1: अच्छा, मंदिर तुहां जो चमुंडा माता पौंदा होना नेड़े मंदिर?
0: चमंडा कांगड़ा बृजेश्वरी मंदिर
1: अच्छा
0: दोनों, बाकी ब्याह शादियां च अजकल ठीक डिमांड पी फुलां दी, ऐसी कोई
1: अच्छा
0: दिक्कत नहीं होंगी।
1: तो चलो खेती का काम पौंदा तो आपू ही कर लेंदे सारे घरे दे सदस्य मिले कि कोई मजदूर वगैरह भी लगाना पौंदा?
0: मजदूर भी दिखा ना, जे काम मैं शुरू किया था मैं इसी एक रोजगार के हिसाब ने दिखते हा,
1: हाँ जी
0: क्योंकि
1: हाँ जी
0: प्रकृति वास्ते भी दिखता
1: हाँ जी
0: दो तीन लेबर आले जिन्होंने
1: अच्छा
0: साथी
1: अच्छा
0: इसका भी काम करते सोगी फैमिली आले भी।
1: अच्छा शक्ति जी, जी तुहां दी जड़ी जो बाकी दी जड़ी जमीन है तेज चे तुहां कुछ जी पौधा रोपण वगैरह भी कीते है, जी कोई फलदार पौधे वगैरह भी लगायो?
0: अम्ब लीची का बगीचा मेरे फादर हो रहा श्री जगतराज जी, तिना 25 साल पहले लगाया हा,
1: हाँ जी
0: बाकी नोई प्लांटेशन च मैं की भी लगाया,
1: अच्छा
0: बाकी सेब नींबू वगैरह।
1: जी हाँ जी अच्छा तुहां दा जड़ा इलाका डिकटू, ए तू पानी दा क्या साधन है, सिंचाई कियां करदे तुहां?
0: पहला तो कुल हुंदी ही कन्ने हुण बोर है अपना खेती हुण दंगे पता छड़दा दे तो कुलां दी कदर भी।
1: तो जड़ा तुहां बोरवेल कीते आ सिंचाई वास्ते, इस ताईं भी तुहां जो अनुदान मिले होना?
0: जी, बोरवेल पर भी मैं दस्यो नी सरकारी स्कीमां जो
1: हाँ
0: काफी ज्यादा अंतमान जो सोल
1: जी
0: कंजर्वेशन पे इदा अनुदान मिले मान।
1: जी ता शक्ति जी दिखा आहां दी जड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी जो तुहां क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बेरोजगारी है पर कहा देखने की मुद्दा है, इस पर तो ज्यादा नहीं बोलिए कहीं ठीक है, पर
1: हाँ जी
0: युवा पीढ़ी है कि नहीं हीन भाव बना रख दे खेती बाड़ी क्या करा दिख सदमी
1: हाँ जी
0: किन्हें अपनी थोड़ी सोच बदलना चाहिए।
1: हाँ जी
0: इससे वधिया काम ही कोई नहीं है
1: हाँ जी हाँ
0: कहना,
1: जी
0: जब खेती बाड़ी करके तो ऑक्सीजन निकलनी है पर मारा पर्यावरण कितना स्वच्छ होना, बाकी तरीके ने करके तो इनकम भी इतनी ही है,
1: हाँ जी हाँ
0: बाहर
1: जी
0: जाने की जरूरत नहीं है।
1: जी हाँ
0: बाहर
1: जी
0: हाँ बाहर मैं बड़ी सिटियां चली आ देखू पोल्यूशन कितना है,
1: हाँ जी
0: खर्चे कितने हैं,
1: हाँ जी
0: कंपनी की बॉन्डिंग कितनी है, गल्ला दिखा हमारे युवा साथी जी नाल जमीन आने
1: हाँ जी
0: जरूर बगीचे लगा लिया पोल्ट्री फार्म के और काफी ज्यादा स्कीम ने।
1: ता शक्ति जी दिखा तो हाँ अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव जड़े से आहा ने सांझा किते जी, कने शक्ति जी दिखा इथु टियाले दे माध्यम ते जड़ा से आहा तो हाँ दे जड़ा ग्रां है डिकटू, इथु दा पूरा जड़ा से नजारा जड़ा से आहा ले लिया, पूरा एक आनंद कने पूरा हरा भरा जड़ा से ये ग्रां है, पक्षियों की जड़ी से पूरी चहचहाट है चौं तरफा। शक्ति जी तो हाँ अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव आहा कने सांझा किते, अपना कीमती समय तो हाँ आहा जो दिता तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद।

0: किसान साथी हो संझा दिया बेला जरूर रौनक जड़ी सै बीड़ा पर बेही के लगी होनी
1: बिल्कुल कहने महाराज देखा तुहां दे तां सारी थकावट भी दूर होई होनी है ना।
0: बिल्कुल ठीक लाया तुहां कहने हूं अपने किसान साथियों लेके चलना कांगड़ा सब्जी मंडी की तरफ कहने सब्जी मंडी के भाव जड़े सत इन्हां तक पहुँचाने तो सब तो पहले आलू का मुल रहा 12-14 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज 28-32 रुपए टमाटर 24-30 रुपए लहसुन 120-130 रुपए अदरक 200-210 कने शिमला मिर्च 40-45 अरबी 28-30 खीरा 22-30 रुपए प्रति किलोग्राम मटर 100-120 फुलगोभी का मुल्य रहा 50-55 रुपए प्रति किलोग्राम बंद गोभी 15-17 रुपए प्रति किलोग्राम पालक 30-35 रुपए हरी मिर्च 25-30 रुपए प्रति किलोग्राम भिंडी 20-25 रुपए घीया 16-20 रुपए प्रति किलोग्राम कने अगर फ्रासबीन की गल करिए 70-72 रुपए करेला 18-20 रुपए गाजर 25-30 रुपए कने मशरूम का मुल्य रहा 180-190 रुपए प्रति किलोग्राम कने फलों की गल करिए फलों का सेब का मुल्य रहा 130-150 रुपए प्रति किलोग्राम केला 50-60 रुपए प्रति दर्जन अनार 140-150 अमरूद 80-90 रुपए प्रति किलोग्राम पपीता 40-50 रुपए खरबूजा 25-35 रुपए कने तरबूज 15-20 रुपए कने पलम जड़ा रहा है 60-90 रुपए प्रति किलोग्राम
1: जी। कने लंबरदार जी देखा चलते चलते ना एक प्यारा दया लोक गीत और सुनी रहा
0: बिल्कुल बिल्कुल

0: भाई लंबरदार जी दिखा इसी लोक गीत कने घड़ी दी सुइयां सांझो उठने दा इशारा करा कर दिया ना
1: जी।
0: पर जाने ते पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग दे सुरेंद्र कपूर और कार्यक्रम प्रस्तुति जितेंद्र पाल सिंह
1: जी।
0: हुण अपने किसान बागवान भाई भैणां ते लैंदे ने अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
0: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमीरपुर जिले के नेरी में स्थापित होगा देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र, लोगों को सृजित होंगे आजीविका के अवसर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु पर जताई चिंता, सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। राज्य के 7 जिलों में मॉनसून की दस्तक, अगले 3-4 दिन अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार व आजीविका के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि इस परियोजना के लिए बायोमास की खरीद 2.5 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत चीड़ की पत्तियों, लेंटाना, बांस और अन्य पौध आधारित बायोमास का उपयोग कर बायोचार का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना से प्रदेश को 28,800 कार्बन क्रेडिट मिलने की संभावना है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग

0: करने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की सलाह देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोकभवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। उन्होंने गैर सरकारी संगठन एक्ट ह्यूमन द्वारा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित कृत्रिम अंग वितरण शिविर का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है और हर व्यक्ति में अपार क्षमता व शक्ति होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
2: 2014 में मात्र 7 राज्यों में हमारी सरकारें थी, आज 2026 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं कि सत्ता एक सेवा का माध्यम कैसे है, सत्ता में रहकर सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू कैसे करें। कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन्हीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन की और ताकत को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं।
0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिले के कल्पा में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आज कल्पा पंचायत में नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मिनी सचिवालय बनने से लोगों को एक ही स्थान पर प्रशासनिक व राजस्व कार्य निपटाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कल्पा में पुलिस चौकी के समीप नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में प्रसव के दौरान दम तोड़ने वाली महिला के परिजनों व धरने पर बैठे विभिन्न संगठनों के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मृत्यु होना चिंताजनक है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से बात कर अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगेंगे। उन्होंने इस घटना को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न करने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शिमला के चर्चित मनीषा मर्डर मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पवन ने बताया कि मनीषा मित्तल का भाई हिमांक मित्तल ही उनकी हत्या का मास्टरमाइंड निकला है और उसी ने हत्या की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि मनीषा मित्तल का अपने भाई के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था और हिमांक ने अपनी बहन की हत्या करवाने के लिए 2 शूटरों को सुपारी दी थी।
3: हिमांक के पास सरस्वती पैराडाइज स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का एक्सेस था, जिससे वह मृतका श्रीमती मनीषा मित्तल के आने जाने का सारा मूवमेंट ट्रैक कर सकता था। ये सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस हिमांक ने गोविंद को प्रोवाइड किया था। जांच के आधार पर यह सामने आया कि हिमांक ही इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था तथा हिमांक ने गोविंद के साथ मिलकर दीपक व आशीष को इस वारदात को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था। हिमांक को भी दिनांक 29/6/2026 को रोहतक हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया।
0: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ

0: खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने आज शिमला जिले के रोहडू में 50वीं बुशहर क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता शीलघाट के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने कहा कि युवाओं के चरित्र निर्माण में खेलों की अहम भूमिका है और राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को लेकर राज्य सरकार चिंतित है और इस पर रोक लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में फागू टीम विजेता और ननखड़ी टीम उपविजेता रही। प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने आज से दस्तक दे दी है। इनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला शामिल हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि इन जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में आज मॉनसून की व्यापक वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और चंबा जिलों में मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दस्तक देने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में कुछ जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: तो आज 30 जून को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो मॉनसून ने पूरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को कवर कर लिया है, साथ में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू को लगभग पूरा कवर है। केवल कुछ एक क्षेत्र शेष हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू के। शिमला और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बहुत से क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो चूड़धार का एरिया जो शिमला का एडजॉइनिंग है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल एरिया है वहां पे मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा परिस्थितियां अनुकूल है कि जो शेष हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा है और कांगड़ा का बहुत सारा क्षेत्र है, सोलन है, यहाँ पे आगामी 2-3 दिनों में मॉनसून का आगमन हो सकता है।
0: तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की काउंसलिंग के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव अनुपम कुमार ठाकुर ने बताया कि बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीआर्क और अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट एंट्री के तहत 7 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा लेटरल एंट्री के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया 25 जुलाई तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। खरीफ सीजन के दौरान भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में खरीफ सीजन में मक्की व धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। हमीरपुर के कृषि उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। मक्की व धान की फसल बीमा के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमीरपुर जिले के नेरी में स्थापित होगा देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र, लोगों को सृजित होंगे आजीविका के अवसर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु पर जताई चिंता, सरकार से मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग। राज्य के 7 जिलों में मॉनसून की दस्तक, अगले 3-4 दिन अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमी पूर्व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय अंब के अंतर्गत आंगनवाड़ी

कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। योग्यताएं इस प्रकार से हैं, केवल वही महिला उम्मीदवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों हेतु आवेदन करने योग्य होगी जो इन शर्तों को पूरा करती हो। अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र की सामान्य निवासी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास होना अनिवार्य है। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित या प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2026 समय 5 बजे तक पहुंचाना सुनिश्चित करें और उम्मीदवार को साक्षात्कार वाले दिनांक 15 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में उपस्थित होना है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय व संबंधित पर्यवेक्षक व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका से संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

कार्यक्रम सबरस में सभी श्रोताओं का स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडी दोस्त पूनम। घर से निकले कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

हंसराज हंस और रे साथियों की आवाज़ों में आपने ये पंजाबी गीत सुना। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में गाया ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

0: आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सौरा

0: समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले

0: दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले

0: भी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed

0: advanced to the round of 16. Morocco defeated Netherlands 3-2 on penalties after a thrilling 1-1 draw in Guadalupe, Mexico. Germany suffered a stunning exit after losing 3-4 to Paraguay in a penalty shootout in Boston, USA, following a 1-1 draw. Brazil has also secured their place in the round of 16 with a 2-1 victory over Japan in Houston, USA, late last night. Tonight, Ivory Coast will take on Norway in Texas, United States. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. Indian time. In another encounter, France will take on Sweden late tonight. The match is scheduled to kick off at 2:30 a.m. IST. The Board of Control for Cricket in India has announced a 15-member women's squad for the Asian Games 2026, which will be held in Aichi, Nagoya, Japan, later this year. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living, also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in the FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोतो, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पार्श्व गायक विशाल डडलानी के बारे में। जी हां दोस्तों, उनका जन्म 28 जून 1973 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो थी वो हिल ग्रीन्स हाई स्कूल से की थी और इसके बाद उन्होंने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री भी हासिल की थी। उनके फिल्मी करियर की बात की जाए तो विशाल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत प्यार में कभी कभी गाने से की थी और ये गाना म्यूज़िक लवर्स को बेहद पसंद आया था, लेकिन विशाल को पहचान जो है वो वर्ष 2003 में फिल्म झंकार बीट से मिली और इस फिल्म में उनकी गायकी ने उन्हें न्यू टैलेंट हंट आरडी बर्मन का पुरस्कार भी दिलाया था और इसके बाद उनके करियर की गाड़ी चल पड़ी। विशाल डडलानी और उनके सह निर्देशक शेखर ने कई फिल्मों में जो है वो गानों को संगीत भी दिया और साथ ही संगीत निर्देशन भी करते हैं और वर्ष 2005 जो है वो इस जोड़ी के लिए सबसे सफल वर्ष रहा था और इस साल उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों को संगीत दिया और विशाल भारतीय संगीत के साथ वेस्टर्न म्यूजिक में भी काफ़ी अच्छे से पारंगत हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको इन्हीं का गाया हुआ एक गीत।

जी श्रोताओं, वर्ष 2005 जो है वो इस जोड़ी के लिए सबसे सफल वर्ष रहा और इस साल उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों को भी संगीत दिया। विशाल भारतीय संगीत के साथ वेस्टर्न म्यूजिक में भी जो है वो काफ़ी अच्छे से पारंगत हैं और एक बार फिर वर्ष 2007 में विशाल के नाम का सितारा चमका और इस साल उन्होंने निर्देशक फराह खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म ओम शांति ओम में जो है वो फिल्म का संगीत निर्देशित किया था और उन्हें इस फिल्म के लिए आईफा फिल्म फेयर और अप्सरा अवार्ड के नामांकन भी मिले थे। अब तक तो हर कोई वर्ग जो है वो विशाल के संगीत का दीवाना बन चुका था और वर्ष 2011 में विशाल ने दो सुपर डुपर हिट फिल्में रावण और डर्टी पिक्चर को संगीत दिया। दोनों ही फिल्मों के संगीत ने बॉलीवुड में धूम मचा रखी थी और दोनों ही फिल्मों के लिए विशाल को कई पुरस्कारों के साथ भी सम्मानित किया गया और उनकी प्रमुख फिल्मों की अगर बात की जाए तो संगीतकार के रूप में जो उनकी प्रमुख फिल्में हैं वो हैं ओम शांति ओम, बचना ए हसीनो, दोस्ताना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बैंग बैंग, सुल्तान, टाइगर जिंदा है इत्यादि हैं। और साथ ही जो जिन फिल्मों में उन्होंने गीत गाए हैं तो उनके लोकप्रिय गीत हैं उनमें हैं ये जवानी है दीवानी, 30 मार खान, अनजाना अनजानी, बेफिक्रे, वॉर, पठान और बैंग बैंग। तो आइए सुनवाते हैं उन्हीं का गाया हुआ एक गीत फिल्म अनजाना अनजानी से, जिसमें विशाल के साथ शिल्पा की भी आवाज़ है।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संगीतकार और गायक विशाल डडलानी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, विशाल जो है वो संगीत निर्देशन के अलावा गायकी का काफ़ी शौक़ रखते हैं और उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। और जिस तरह से उनकी फिल्मों का संगीत जो है वो हिट रहा है, उसी तरह से उनकी आवाज़ भी हिट रही है। और इसके साथ विशाल ने अपने टीवी करियर की शुरुआत जो थी वो टीवी के सारे गामा सिंगिंग सुपरस्टार से की थी और इस शो में वो बतौर जज भी नज़र आए थे। और इसके बाद वो इंडियन आइडल में बतौर जज की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पूनम को दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम धाम गीतांदी।

लोक झंकार के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त पूनम। और कार्यक्रम में सबसे पहले लेकर आए हैं मान सिंह की आवाज में ये लोकगीत।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धाम की तांदी, और अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप परदेसी की आवाज़ में।

निकेश कुमार की आवाज़ में आपने ये लोकगीत सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं वर्षा कटोच का गाया हुआ।

आप सुन रहे थे इंद्रपाल छाबड़ा की आवाज में ये लोकगीत। अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं ऋषि कुमार का गाया हुआ।

आप सुन रही थी पूनम शर्मा और सपना कुमारी की आवाज़ों में ये लोकगीत। कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं अंकुश संदल का गाया हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धाम गीता दी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सुनैना से, जिसे गाया है हेमलता ने।

देवर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है देश परदेश और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

मन की आंखें, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लव इन टोक्यो से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05
1: नमस्कार अंग्रेजी आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है।

0: next month to distribute a pre-printed enumeration form in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the FIFA World Cup 2026, the match began Ivory Coast and Norway in underway in Texas, United States. And that's the end of the news bulletin.
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रमों का प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।